जा बुरा करते हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।

एक खूबसूरत सा नया दिन, नया हफ्ता और एक खूबसूरत सा नया ख्याल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं आफरीन एंड यू ट्यून्ड इन टू 89.6 मिर्ची 1 ऑन द शो मिर्ची मॉर्निंग्स। यार एक बैटरी जानते हो, बैटरी जिसे हम घड़ियों में डालते हैं या खिलौनों में डालते हैं, और अगर आपने देखा होगा वो बैटरी में पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है ना। हम इंसान में इस तरह से ही होते हैं, हम सब में पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, लेकिन होता क्या है ना, हम इतने जजमेंटल है कि हमें सब में ना नेगेटिविटी बहुत जल्दी नजर आती है, किसी की पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स और पॉइंट्स बहुत रेयरली नजर आती है। बस बात इतनी सी है कि जब हम दूसरों में पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा ध्यान दें और उनकी नेगेटिविटी को नजरअंदाज करें, बस उसी तरह से दूसरे भी हमें इसी नजरिए से देखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप सुन रहे हो आफरीन को, और ऑन दिस पॉजिटिव नोट आज के शो की शुरुआत करते हैं। और 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हाँ जी,
1: ये एक सेकंड, ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं, ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है, वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, अगर
0: आपके घर में कोई नहीं है?
1: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं, तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटा, चुप।
0: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
1: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ, एक सेकंड। आली है, मामा आएंगी, मामा आएंगी, एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगे एक सेकंड सर, आएंगी मामा आएंगी, चीजी लाएंगी बेटा, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा है, आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
0: नहीं नहीं, हाँ, इसने डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है?
1: एक सेकंड, इधर आओ, हाँ इधर आओ, देखो, मामा आ गई, चीजी लाई, हाँ डायपर गीला है बहन जी इसका,
0: उतार लीजिए उसको।
1: एक सेकंड रुकिए, ये इसके गले में अटक रहा है डायपर, एक सेकंड।
0: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
1: अच्छा, ये बेब है, एक सेकंड,
0: देखिए सुसु करा होगा उसने, देखिए।
1: हाँ, सुसु करा, चुप,
0: उतार दीजिए, एक सेकंड,
1: उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही
0: है,
1: क्लैपिंग करो,
0: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
1: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं, रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
0: और मैं पागल हूँ, ओह नो।
1: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
3: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: Blizzard at Dairy Queen and Papa John's. Enjoy double delight offer. Two small pizzas at 44, two medium pizzas at 66, two large pizzas at 99 Rial. Papa John's, better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
2: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
4: 89.6
5: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हार्दिक संधू और स्वस्ति महल की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग भाई। 2nd of August आज की तारीख और महीना बदल गया है भाई, मतलब रफ्तार तो देख रहे हो भाई। और यहाँ पर गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग के मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। गुड मॉर्निंग आफरीन, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसी है? आई होप आपका नाम आलीशान है भाई, अपना नाम जरूर बताइएगा, हर रोज आपका मैसेज आता है। वेल अपार्ट फ्रॉम दैट, सईद हकीम भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, पर सैफुल्ला भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, नाजीन जी भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग मैसेज आया है। बस इतना तो समझ आ रहा है कि भाई ये हफ्ता आपका बहुत जबरदस्त तरीके से गुजरने वाला है, बस ऐसी ही मेरी अंदर से फीलिंग आ रही है। बस अच्छा अच्छा सोचते रहो सभी के लिए, वैसे ही अच्छा अच्छा होते रहेगा। एंड आई विश आई कुड से दैट फॉर आर वेदर एज वेल, कि भाई अच्छा अच्छा सोचेंगे अच्छा ही वेदर होगा, बट शायद नॉट, क्योंकि हम एंटर कर चुके हैं ह्यूमिडिटी वाले फेज में।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल देखो, वेदर जो है आपने बिल्कुल ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले 2-3 दिनों से पसीने अब निकलने आ गए हैं जो पहले नहीं आ रहे थे, क्योंकि यस हम वो वाले फेज में अब एंटर कर ही चुके हैं जब ह्यूमिडिटी एकदम चरम पर रहती है हमारे कतर में। लेकिन कोई ना, इसका इशारा इस वक्त भी इस तरफ जाता है जहां पर ये फेज लगभग 1-1.5 महीना चलेगा और उसके बाद में खलास, वी आर गोना हेड टुवर्ड्स आवर विंटर वाले दिन। लेकिन नहीं, फिलहाल आज की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, मिनिमम 34 डिग्री सेल्सियस है। फिलहाल जो महसूस कर रहे हो वो भी 45 ही है मेरे दोस्त। और ह्यूमिडिटी आज कल से और ज्यादा होगी, फिलहाल तो 66% पर है। और ऐसे मौसम में क्या होता है ना, हवाएं बिल्कुल बंद सी हो जाती है, वैसे ही कुछ हाल चल रहा है हमारे कतर में। वेल विद दिस मौसम ने तो हमें उलझा के रखा है, लेकिन हमारी बातें आपको उलझाएगी नहीं, बिल्कुल एंटरटेन करेगी और गाने उससे भी ज्यादा एंटरटेन करेंगे। बिल्कुल इसी गाने की तरह राघव तनिष बागची अजीज कौर की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
2: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah.

0: What a beautiful gana, Atif Aslam aur Gul Pandra ki awaaz mein Coke Studio ke gaane. And I really like Coke Studio ke gaane. Matlab especially aap कुछ नहीं कर रहे हो, घर पर हो, म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हो, सो आई थिंक सो कोक स्टूडियो की प्लेलिस्ट रियली एंटरटेन्स यू. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai on this beautiful morning. It's a new day, it's a new week. In fact, it's a new month as well. August ke mahine mein entry ho chuki hai and with this having said that ke nahi naya mahina hai, to zahir si baat hai hum fuel update bhi lekar aayenge. Kya kehta hai zara dekhte.
1: What is the price of fuel, you beauty fuel? Fuel update.
0: Well, Qatar Energy ne confirm kiye hai August 2026 ke fuel prices keeping super petrol and diesel steady while trimming the price of premium petrol. Jahan super grade petrol is set at 2.10 Qatari riyal per liter, jo July mein tha bilkul waise hi rakha hua hai. Diesel also remains at 2.05 Qatari riyal per liter. प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल हालांकि थोड़ा सा कम हो गया है, अब ये 2 कतरी रियाल पर लीटर पे है. पहले जो था जुलाई में 2.05 था, पर 0.05 से कम हो गया है. वेल, इट्स अ मॉडेस्ट कट फॉर मोटरिस्ट आउट देयर. सो ये थे इस महीने के फ्यूल प्राइसेस. मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट ऑन मिर्ची, और जैसे मैं बता रही थी आपको कोक स्टूडियो के गाने मुझे बहुत पसंद है. सो अगेन प्लेइंग अ ट्रैक विशाल ददलानी और सोनू कक्कड़ की आवाज में, एंड दैट इज मदारी फॉर यू. बाइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुणाल खेमू, एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
3: मुझे एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम, आई डोंट रिमेंबर माय ड्रीम्स, मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक व्हिच इज अ गुड थिंग क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते, तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की।
2: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते, हर दिन की नई शुरुआत। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC. स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची, द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: Zubeen Garg aur Alisha Chennai ki awaaz mein ye gana Raichur aur Mirchi from the movie Namaste London. And do you remember Katrina Kaif us gaane mein kitni khoobsurat lag rahi thi? In fact, in this entire movie Namaste London, jahan Akshay Kumar bhi the, Katrina Kaif looked her best, I feel. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai right here on Mirchi Mornings. Aur baat karte hai ek aise exhibition ke baare mein jahan par to dhoom machi hui hai. In fact, ye exhibition mein pehle 6 dinon mein 38,000 visitors pahunch chuke hai. Ab aap socho kaun si exhibition ki baat kari hai. To main baat kar rahi hu 11th local dates exhibition ke baare mein jo Sukh Waqif mein chal raha hai. Yes, ab tak ke 76,500 kilo se zyada locally grown dates bik chuke hai. And 125 local farms is exhibition ka hissa hai. Dekhiye na, aksar hum Qatar ko sirf oil aur gas economy ke perspective se dekhte hai, right? Of course. Lekin quietly, Qatar has been investing heavily in agricultural resilience. Is exhibition mein sirf khajoor hi nahi. In fact, locally grown figs, bananas, papaya aur almonds bhi mil rahe hain. Matlab desert nation gradually apni food independence ki taraf bhi strong steps le raha hai, hai na? Achha, interesting baat yahan par ye bhi hai that yahan 114 varieties of dates showcase ki gayi hai. Wow, I didn't even know ke 114 varieties bhi hoti hai. गजब, मतलब खुनाइजी, बरही और शीशी जैसी वैरायटीज भी है और हम जनरली बस खजूर बोलकर ख़त्म कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत सारे डेट्स होते हैं, बहुत किस्म किस्म के डेट्स होते हैं. अजवा, मजदूल, एंड दिस इज़ व्हाट आई प्राइमरीली न्यू अबाउट. सो वेल, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम कि आप जाए खजूर खरीदे वहाँ जाकर, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी जो है सिर्फ इस टाइम पर ही मिलती है. दैट इज़ द डेट्स एग्जीबिशन के वक्त पर. ईस्टर्न स्क्वायर सुख वाकिफ इज़ द प्लेस. मैं हूँ आफ्रीन आपके साथ. अगला गाना जो सुना रही हूँ मैं सुखी बाजी की आवाज़ में है, लेकिन ये जो मूवी इतनी पावरफुल थी, एज इन द डायरेक्टर इज़ पावरफुल, द एक्टर उफ, इतनी ज़बरदस्त आकाश. बट क्या क्या किस मूवी की बात करिए आफ्रीन, इतनी तारीफ जो कर रही हो तुम. Well, I am talking about Haider movie ka ye gaana, Bismil. Shahid Kapoor, you are awesome. And Tabu, usse bhi zyada gazab.
1: Bismil, Bismil, bulbul, Bismil.
0: Mike se dil tak Afreen ke saath enjoy kijiyega. Aur Mirchi, it's hot.

0: हेल्पलाइन?
1: बोल दामिनी बोल, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: वो ना, वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं, वो जल ही जाते हैं और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
1: क्या करूं का क्या मतलब है? जलने वाले तो जलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: खोपड़ी तोड़ दे।

0: वेदांग रायना और निलंजना की आवाज में ये गाना राइट ऑन मिर्ची और बड़ा ही मजेदार गाना लगता है मुझे। एंड टॉकिंग अबाउट दिस मूवी, मैं वापस आऊंगा। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी ना थिएटर में, आई एम टेलिंग यू, यू हैव मिस समथिंग रियली ह्यूज। मतलब आप जब ये मूवी देखोगे ना OTT चैनल पर, तो प्लीज विदाउट एनी इंटरप्शंस बिल्कुल अच्छे से देखना एंड डोंट मिस आउट ऑन सच जेम मूवीज यार। मैं हूँ आफरीन, आपके साथ। बच्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7:04 के तरफ, और कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें लेकर आई हूँ मैं।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: अच्छा सोचिए कि अगर कोई आपके दिमाग में चल रही बातें पढ़ ले तो हाँ, मतलब आपने ऐसे कोई नाम अगर सोचा हो वो एकदम से पहचान ले, या फिर कोई नंबर्स चल रहे हो आपके दिमाग में वो पहचान ले। एंड वेल, मैं कोई साईफाई मूवी या वेब सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ रियलिटी की। और ऐसे ही कुछ हमारे सामने होने वाला है, यानी मिर्ची अब एक नया इवेंट लेकर आया है एंड इट्स नन अदर देन द फेमस मेंटलिस्ट सुहानी शाह। ये हमारे कतर में होने वाली है 25 सितंबर में। और ये जो है ना सुहानी शाह के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस आई एम श्योर इंस्टाग्राम पर देखे होंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोगों को लगता है कि वो मैजिशियन है, बट शी कॉल्स हरसेल्फ अ मेंटलिस्ट। वो इसलिए क्योंकि उनका काम सिर्फ ट्रिक्स दिखाना नहीं होता है, बल्कि ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और ह्यूमन बिहेवियर को वो इतनी डीपली समझती है कि आपको लगेगा कि यार सच में ये माइंड रीड कर रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। एंड आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पर इनके कई सारे वीडियोस देखे होंगे, एंड नाउ इज द टाइम कि आप उन्हें लाइव विटनेस करें कतर में, वो भी 25 सितंबर को। सो वेल, फटाफट से टिकट्स अगर आपको बुक करनी है, सो यू गॉट टू स्टे ट्यून्ड विद इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर, या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और यहां पर आपको डिटेल्स तो दी जाएगी। यू जस्ट हैव टू हैव सम पेशेंस यार, बस मेंटली आप रेडी हो जाए कि भाई आपका कोई माइंड रीड करने यहां पर आने वाला है। मैं हूं आफरीन आपके साथ, राइट ऑन मिर्ची। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, बंजारे यानी बैरान।

0: Mirchi.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले।
3: शिवानी,
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी शिवानी शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो।

0: अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है। मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है। कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार।
1: जुबी शरा वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah live.

ऐसे कैसे हो सकता है यार आफरीन? अच्छा, ऐसे ही कुछ रिएक्शन था मेरी फ्रेंड का. वेल, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि मैं वेकेशन पर गई थी, स्वीडन गई थी, और वहां पर मैं मेरी फ्रेंड से मिली. शी इज अ स्कूल फ्रेंड जो वहां पर स्वीडन में रहती है काफी सालों से. तब हम ना दो कंट्रीज के बारे में बात कर रहे थे, कतर और स्वीडन, जहाँ पर कितना एक्सट्रीम वेदर होता है ना. एक तरफ जहाँ पर इतनी ठंड होती है और एक तरफ जहाँ पर हमारे यहाँ पर इतनी गर्मी होती है. सो हाउ डू वी कोप विद द वेदर, एक्सट्रीम वेदर. तो मैंने कहा कि भाई कतर में तो यार काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ना रस्ते पर एसी है. एंड शी वॉज एब्सोल्यूटली फ्लैबरगास्टेड विद दिस सेंटेंस के रस्ते पर एसी, हाउ इज इट इवन पॉसिबल. मैंने तो बड़े ही कन्वीनियंटली कह दिया कि हाँ ऐसा तो रहता है. फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये आम बात थोड़ी ना है, दुनिया भर में ऐसा होता नहीं है. इनफैक्ट हम अगर गल्फ रीजन की बात करें तो ऐसा हर जगह पर नहीं है, लेकिन सोचने चाहे तो कतर में ऐसे कितनी सारी जगह है ना. एंड आई ऑल्सो रियलाइज व्हेन दिस वीकेंड मैं वेस्ट वॉक गई थी, और वेस्ट वॉक में जब मैं चल रही थी भाई इतनी ह्यूमिडिटी हमारे कतर में, लेकिन नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ पसीना. दैट्स हाउ कतर इज ब्यूटिफुली बिल्ट. अगर मैं ओपन एसीज की बात करूँ तो कितनी सारी जगहें हैं, जैसे गिवान आइलैंड है, सेंट्रो है, देन वी ऑल्सो हैव कतारा कल्चरल विलेज जहाँ पर सबसे पहला एसी स्ट्रीट बना था, प्लेस वेंडम का जो आउटडोर एरिया है वो है, देन अलहजम मॉल जो है वो तो पूरी तरह से ऐसे ओपन में ही बना हुआ है ना, वहाँ पर भी एसी है. वेस्ट वॉक जैसे मैंने बताया वहाँ पर भी एसी है आउटडोर. अगर देखा जाए तो ऐसी कई सारी जगहें हैं हमारे कतर में जहाँ पर आउटडोर एसी मिलता है. और ऐसे में ना जहाँ पर कतर में अब वेदर इतना ज़्यादा गर्म हो गया है, एंड यू रियली वांट टू टेस्ट कि अच्छा ये अब कितना ज़्यादा इफेक्टिव है आउटडोर एसी, देन यू शुड रियली गो एंड ट्राई दीज प्लेसेस. मैंने ऑलरेडी कर दिया है वीकेंड पर, एंड इट इज़ 100% परफेक्ट. मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट हियर ऑन मर्शी, इट्स हॉट.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी। टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. TNC supply.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah live.

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये गाना, व्हाट अ सॉन्ग यार। 90s का तड़का जब ऐसा लगता है ना, कितना मजा आता है ना। मतलब एक ऐसी कुछ तो याद आपको याद जरूर आती होगी आपके 90s से जुड़ी हुई या 2000 से जुड़ी हुई, एंड जिंदगी बस अच्छी लगने लगती है कि एवरीथिंग वॉज सो गुड बैक देन, है ना। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्टरीन का साथ है ऑन मिर्ची मॉर्निंग, एंड इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू वीक, एंड इट्स अ न्यू मंथ। और गेम लेकिन वही है यार, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेलना है हमें। और आज का जो सीन है ना, बड़ा मजे का सीन है। इट्स अ पॉपुलर मूवी बट नॉट अ पॉपुलर सीन, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये याद आ ही जाएगा। चलिए रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये सीन सुनो।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, सीन टेस्ट।
2: अरे आओ, हम लोग डरते हैं क्या? तुम लोग मेरी फ्रेंड्स को जानते नहीं, एक एक को पकड़ पकड़ के मारेंगे हम लोग।
0: तुम लोग मेरे फ्रेंड्स को जानते नहीं, एक एक को पकड़ पकड़ के मारेंगे। देखो भाई, ये मूवी का नाम ना बड़ा है, तो अगर नाम पूरा टाइप नहीं कर पा रहे हो तो मुझे फटाक से व्हाट्सएप पे ना वॉइस मैसेज भेजो, 5000186 इज माई नंबर। और ना ये पॉपुलर एक्ट्रेस है ना कुछ है, लेकिन फिर भी ये मूवी बड़ी सुपर डुपर हिट रही है, क्योंकि इसके जो बड़े मेन लीड्स थे वो एकदम दिग्गज स्टार्स है। अब मैं इसके आगे पीछे हिंट तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। दोस्तों पर बेस्ड है ये मूवी। बहुत ज्यादा बोल दिया क्या? 5000186 इज माई नंबर, व्हाट्सएप नंबर। लेट्स कनेक्ट योर। मीनवाइल आदित्य रखारी की आवाज में ये गाना ऑन मिर्ची।

0: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
0: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
0: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
2: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC। स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: अरिजीत सिंह की ये दमदार आवाज में आपने गाना सुनाया। और अरिजीत सिंह को क्या हम सिर्फ हार्ट ब्रेक गाने और रोमांटिक गानों के लिए जानते हैं? नहीं भाई, इस तरह से सरप्राइज गाने भी ये हमारे लिए गाया करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफ्टरनून का साथ है राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज बड़ा ही कंफ्यूज किया है मैंने आपको, वो कैसे लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट है। अब ये सीन सुनो और फिर सोचो यार कौन सी मूवी है वो। आप अभी वो मैसेज कर सकते हो मुझे अभी भी, ठीक है ना?
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट सीन टेस्ट।
2: अरे आओ, हम लोग डरते हैं क्या? तुम लोग मेरे फ्रेंड्स को जानते नहीं, एक एक को पकड़ पकड़ के मारेंगे हम लोग।
0: एक एक को पकड़ पकड़ के मारेंगे हम लोग, कौन सी मूवी है ये? जिसने भी आंसर दिया है ना, हैट्स ऑफ मैन। मतलब मैं अगर आपकी जगह पर रहती शायद मैं नहीं पहचान पाती, लेकिन हालांकि ये मूवी बहुत पॉपुलर है और जब मुझे ये मूवी का नाम पता चलता तो मैं कहती अयो ये मूवी थी ये। ऐसी कुछ आपका हाल होने वाला है। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं यहाँ पर, गलत जवाब के भी आए हैं। किसी का कहना है ये जो जीता वही सिकंदर है, किसी का कहना है ये हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया है। लेकिन नो माई फ्रेंड्स, द राइट answer is
3: hi this is chintan
0: hi morning. chintan good morning
3: the movie name is ye jawani hai diwani
0: that is absolutely right it is ye jawani hai diwani jahan par dev ka bhi message bilkul sahi aaya hai charlie ka bilkul sahi message hai rizwan ka bilkul sahi message hai aur ye kaun hai mohsin ne bhi bilkul sahi message kiya hai ki it is ye jawani hai diwani and today being friendship day matlab yaad hai na wo first sunday of august hum school college mein to friendship day hi manate the yaad aaya wo friendship bands aur fir wo t-shirt par white t-shirt par doston ke naam likhna marker se My God, good old days। इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे बस कुछ ही देर में। तब तक के लिए अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में हो जाए। और जब भी ये गाना बजता है मुझे मन करता है कि बस बैग उठाऊं और चल पड़ूं कहीं घूमने के लिए। और दोस्तों के साथ तो और भी मजे का होता है। माइक से दिल तक आप फ्रीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची एट

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
1: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
2: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
1: हिट गाने
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 89.6 89.6 FM।

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 8:04 की तरफ, और आज का दिन ना डेफिनेटली खास तो बहुत है।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: देखो हमारे लिए ना साल के सारे संडेज एक तरफ थे और ये वाला संडे एक तरफ था। थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलो आपको। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और याद करो वो दिन पुराने, आपके स्कूल कॉलेज वाले दिन, जब अगस्त के फर्स्ट संडे के लिए हम कितने ज्यादा एक्साइटेड होते थे यार। इट्स फ्रेंडशिप डे। हाँ, इंडिया में ना फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त में हम फ्रेंडशिप डे मनाते थे। वैसे देखा जाए तो स्कूल कॉलेज हम संडे जाते नहीं थे, तो आइदर हम उसके पहले वाले फ्राइडे या फिर मंडे, दैट्स हाउ वी यूज्ड टू सेलिब्रेट। और सेलिब्रेशन का तरीका मेरे ख्याल से आपका और मेरा बिल्कुल कॉमन नहीं था, वो फ्रेंडशिप बैंड बांधना और फ्रेंडशिप बैंड पर अपना नाम भी जरूर लिखना, और फिर दोस्ती का जो मीटर है किसका हाई है ये चेक करना, क्योंकि किसका हाथ पूरी तरह से भरा हुआ है फ्रेंडशिप बैंड से। माय गॉड, गुड ओल्ड डेज है ना, फ्रेंडशिप डे मनाने के कितने मजेदार तरीके हुआ करते थे। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, एक ऐसी दोस्ती जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अंडररेटेड होती है, ना उसे स्लैम बुक की जरूरत है ना उसे फ्रेंडशिप बैंड की जरूरत है, और वो है अडल्टहुड वाली दोस्ती। यानी अब जब जिंदगी में आप ईएमआई, डेडलाइंस, रिस्पांसिबिलिटीज, फैमिली के बीच उलझे हुए होते हो, तो एक दोस्त आपका जरूर होता है जो आपका कंधा होता है ना, जिसके पास आप ना सॉल्यूशंस ढूंढने नहीं जाते हो, सिर्फ आप अपने ना प्रॉब्लम्स वेंट करने जाते हो, और उसी में मेरे ख्याल से आपको सुकून मिलता है। एक तरह से आप कह सकते हो ये एक थेरेपी है आपके लिए, जहां ये दोस्ती में ना एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक्सेप्टेंस होती है। ये अडल्टहुड वाली दोस्ती में जजमेंट से ज्यादा सुकून मिलता है। तो है क्या आपका ऐसा कोई दोस्त जो अब आपके अडल्टहुड में आपका बहुत ही खूबसूरती से साथ दे रहा हो? तो आज का दिन है, उसे हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहिए। तो वो यही कहेगा, यार बचपना छोड़, कहाँ यार फ्रेंडशिप डे, वो तो हम स्कूल कॉलेज में मनाते थे, है ना। माइक से दिल तक आफरीन को सुन रहे हैं आप, और मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vidva la burga. Mirci, burga. Burga.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन

0: कौन आ सकता है, किसकी जिप्सी?
1: एक तो समन है आपके नाम का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
0: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
1: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन,
0: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है। वो
1: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक मिनट होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
0: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
1: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहला रहा हूँ,
0: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
1: किसकी डेथ हो गई सर?
0: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
1: रुकिए, आशीष भार्गव सर, आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
0: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था। रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
1: मैं कहाँ रहा हूँ?
0: सॉरी, आप अभी कहाँ पर हो?
1: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
0: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं।
1: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
0: यार।
1: थैंक यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
3: इट्स पटाक। Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
5: Mahendra Singh Dhoni ke dimag mein kya chal raha hai? Ye samne wali team ko kabhi pata nahi chala. Lekin usse pata hai. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
6: या आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आई यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th September एट QNCC. स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची. The mentalist Suhani Shah.

अच्छा बताओ, कभी ट्राई किया है नो स्पेंड वीक? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और नो स्पेंड वीक क्या होता है, जहां पर आप ना अपने आप पर कंट्रोल करते हो और खर्चे नहीं करते हो, स्पेशली वो खर्चे जो जरूरत होती नहीं है, बस कुछ इंपल्स शॉपिंग होती है और इंपल्स बाइंग होती है कि चलो यार ले लेते हैं, ठीक लग रहा है, और बाद में रियलाइज करते हैं कि आई इसकी तो जरूरत थी ही नहीं हमें. तो कभी ट्राई करके देखो, एटलीस्ट एक हफ्ता ही क्यों ना हो, चलो आप और मैं ना ये हफ्ता मिलकर ट्राई करते हैं और करेंगे तो ही तो सेविंग कर पाएंगे और फिर ही तो हम एक्सचेंज रेट का फायदा उठा के हम पैसे भेज पाएंगे. जैसे आज का एक्सचेंज रेट कह रहा है, कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.16, वहीं जना पाकिस्तानी रुपीज 76.35, बांग्लादेशी टाका इज एट 33.98, श्रीलंकन रुपीज की अगर बात करें तो इट इज एट 92.12 एंड नेपाली रुपीज आपको मिल रहे हैं कतरी रियाल के बदले 41.70. ये थे आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां. खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला वन एंड ओनली 89.6 मिर्ची वन. और ट्राई करो नो स्पेंड वीक. मैं हूँ आफरीन आपके साथ ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
2: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
1: ओ माय बॉय, तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइंस हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, ई रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. टीएनसी सप्लाई.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah live.

तो जमाने चले जाएंगे लेकिन मेट्रो इन दोनों के गाने हर जमाने के साथ रिलेवेंट रहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और सीधा डाइव इन करती हूँ मैं अगले गाने की तरफ क्योंकि उसके तुरंत बाद मैं आपके साथ में एक मजेदार वाला गेम खेलने वाली हूँ। अरिजीत सिंह की आवाज कमिंग अगेन, निकिता गांधी का साथ, राइट ऑन विच इट्स हॉट।

केदारनाथ का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। और आज आफरीन कुछ नया लेकर आई है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है और मैंने कहा था ना, मैंने प्रॉमिस किया था आपको नए महीने के साथ में मैं कुछ नया भी लेकर आऊंगी, यानी मेरा गेम का तरीका कुछ बदलेगा और कुछ ऐसा है कि जिसे मैं कहती हूँ मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स, जो हर रोज कुछ नई मिस्ट्री, कुछ नया चैलेंज आपके लिए लेकर आती है। तो आज के मिस्ट्री बॉक्स में एक ऐसा थीम सॉन्ग है जो आपको गेस करना है कि यार ये गाना तो सुना सुना सा लग रहा है लेकिन ये किस चीज के लिए है। सो हियर इट गोज।

0: All right, मिस्ट्री सुलझाओ और बताओ, ये जो गाना आपने सुना है, आई एम श्योर आपने ये पहले बहुत सुना था, ये किस चीज का थीम सॉन्ग है? नाम याद आ रहा है आपको? 5000196 इज माई नंबर। फटाफट से यहाँ पर आके बताओ कि ये जो थीम सॉन्ग मैंने सुनाया था, ये किस चीज का थीम सॉन्ग है? एक हल्का सा हिंट देती हूँ, ये एक कार्टून का थीम सॉन्ग है जो हम बचपन में बहुत देखते थे। अब इससे ज्यादा नहीं बता सकती हूँ। I've started getting answers here. Parvez ka answer hai, bilkul sahi hai. And I'm waiting for all your answers. I'm sure you're gonna go into a nostalgic ride right now. Filhal ke liye toh main agla aapko Bollywood bol dal suna rahi hoon. Aur uske ek gaane ke baad main aapko iska answer zarur sunaungi right here on Mad Sheet Hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal. Only on Mad Sheet Hot.
2: Amit Trivedi, studio hai, guitar hai. माहौल है, रुके किस लिए आप?
3: होने दो बतिया सीने में दिल, सॉरी वन मोर टेक प्लीज।
2: टेक एज मेनी टेक्स एज यू वांट अमित त्रिवेदी, हम तो सुनते रहेंगे मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC। स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

और बस यही एक धुन आपको पहचाननी थी। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज मैंने प्रॉमिस किया था मैं कुछ नया लेकर आऊंगी, तो बस ऐसे ही प्रोबेबली हर रोज आपके लिए कुछ नया चैलेंज होगा। वेल क्या बात कर रही है आफ्टरनून, आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यू गेम विच आई हैव कम अप विथ। और बस इसमें हर रोज मैं कुछ नया नया तड़का सा लगाते रहूंगी। और मेरे गेम का नाम है मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। और आज ऐसी कोई धुन है जो मैं सुना रही हूँ जो आपको सीधा आपके बचपन में ले जाने वाला है। कौन सी धुन है, चलिए सुनते हैं और आपने पहचानना है।

0: All right, मिस्ट्री बना तो दिया मैंने, मिस्ट्री सुलझाने का काम आपका था. सो क्या है ये, कौन सी धुन है, बहुत बार सुना है ना, और बहुत लोगों के मैसेजेस भी आए हैं यहाँ पर, वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे अहमद मोहम्मद ने मैसेज किया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने मैसेज किया है, परवेज ने मैसेज किया है, और प्रिंसन ने तो मैसेज भेजा है आपके लिए. लेट्स हियर दैट.
1: हाय अफ्रीन, गुड मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग.
1: द थीम सॉन्ग इज ऑफ डकटेल्स.
0: ऑल राइट.
1: अंकल स्क्रूज एंड हिज थ्री नेफ्यूज लॉन्च पैड. ओ माय चाइल्डहुड memories.
0: Bilkul.
1: This is Prinsen here, and have a lovely day. Thank you.
0: You
1: thank you for the music.
0: Do
1: as well.
0: Have a lovely day. और कहा था ना मैंने आपको, बिल्कुल बचपन की याद दिला दूंगी. That's how it happened for Prinsen, and it is DuckTales, जो कार्टून हम बचपन में देखा करते थे. अंकल स्क्रूजी थे और उनके तीन भतीजे थे और बड़े मस्ती करते थे और बड़े होनहार और होशियार भी थे. और अंकल स्क्रूजी के पास बहुत सारा पैसा था, याद आया कुछ? और तब ऐसा लगता था यार हमारी जिंदगी में भी एक ऐसा चाचा होना चाहिए जिसके पास इतना सारा पैसा हो. विद दिस मूविंग एंड तो नेक्स्ट ट्रैक करना उजला नेहा कक्कड़ की आवाज माइक से दिल तक आफरीन के साथ और मिर्ची के साथ.

0: बलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
1: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
2: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
3: कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
4: 89.6 89.6 FM मिर्ची

0: संजू राठोड की आवाज में ये गाना आणि काय जबरदस्त गाना आहे हे सांगतात ना. मतलब मैं थोड़ी सी मराठी में चली जाती हूँ. क्या है ना कि आप आफरीन को मुंबई से निकाल सकते हो लेकिन मुंबई को आफरीन के अंदर से नहीं निकाल सकते हो. एंड दैट ऑलवेज हैपन्स जब मैं संजू राठौड़ का कोई गाना सुनती हूँ. और बड़ा ही इनोसेंट सा आवाज है इनका और बड़े सिंपल से लिरिक्स है और अच्छे गाने यार. मतलब स्वीट से है. मैं हूँ आफरीन आपके साथ. स्वीट से आफरीन कह सकते हैं क्योंकि यार अच्छा शो आपको सुनाती हूँ. सुबह में एनर्जी से भर डालती हूँ. तो बस और क्या चाहिए. बस इसी तरह से आपको एक मज़ेदार इवेंट के बारे में बताने वाली हूँ लेकिन इस गाने के उस पार आपको बने रहना है मेरे साथ. यानी आपकी सिंपली आफरीन माइक से दिल तक. और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है 9:05 की तरफ.
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center. Whoa!

अच्छा सोचिए, अगर आप कल सुबह उठ जाए और दुनिया से सारे रंग गायब हो जाए तो? यानी जो रेनबो है वो सफेद और ग्रे हो, पेड़ों का हरा भरा रंग ही ना हो, लाल गुलाब बस एक प्लेन फूल लगे, सनसेट में ये ऑरेंजिश येलोइश कलर ही ना हो, बिल्कुल फीका सा आसमान हो, कितनी बेरंग लगने लगेगी ना जिंदगी। तो बस सच तो ये है कि हम कलर्स को सिर्फ देखते नहीं, फील भी करते हैं, है ना। ग्रीन हमें सुकून देता है, ब्लू शांति का एहसास, और येलो जो है ना वो खुशी का एहसास देता है। कलर्स ना हमारी इमोशन की लैंग्वेज जरूर है, और इसी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल दिया है कलर वर्स ने, जो अब कतारा कल्चरल विलेज में है। ये ओपन हो चुका है और यहाँ कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ से रंग खो गए हैं और विजिटर्स उन कलर्स को वापस लाने की जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग, नहीं? एंड ये सिर्फ ना बच्चों के लिए नहीं है, आई एम श्योर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर विल आल्सो एंजॉय दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पर 7 इमर्सिव ज़ोन्स है, इंटरैक्टिव गेम्स है, लाइव परफॉर्मेंसेस है, सरप्राइज कैरेक्टर्स है। तो यार बच्चों के तो मजे ही मजे, लेकिन एडल्ट वर्स ने, जो अब कतारा कल्चरल विलेज में है, ये ओपन हो चुका है और यहाँ कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ से रंग खो गए हैं और विजिटर्स उन कलर्स को वापस लाने की जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग, नहीं? एंड ये सिर्फ ना बच्चों के लिए नहीं है, आई एम श्योर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर विल आल्सो एंजॉय दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पर 7 इमर्सिव ज़ोन्स है, इंटरैक्टिव गेम्स है, लाइव परफॉर्मेंसेस

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Murga, murga. La fiesta a la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello,
4: Mr. Gotham.
3: Good
4: morning. Sir, मैं actually आज सुबह वाले request करना चाहता हूँ. मैं सो आज सुबह आप वो singing, winging सिखाते हैं सर. तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े different होते हैं.
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था. तो स्नेक का ही घुस गया था. तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ. सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन का है सर. नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर, कुछ गा के
4: हाँ वही सर. नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना. कोंडा आपने ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ.
4: वही सर है ना. कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
3: कौन से गाने है?
4: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में यही फायदे मेरे लिए. एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया.
3: सर साहब
4: सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा.
3: सुन ले बात
4: मेरी बात.
3: हाँ सुन पहले बात.
4: हाँ सर.
3: और इसे बंद करिए. बीन बीन जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
4: है. सर बोलिए.
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के घर नहीं चलते. समझ गया ना तू बात?
4: जी सर.
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ.

0: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah live.

जानते हो, हर एक के जिंदगी में मेरे ख्याल से एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो बिना मांगे एडवाइस भी दे देता है, जो आपके सीक्रेट्स भी जानता है और जरूरत पड़ने पर पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ भी जाता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आज शायद आफरीन फ्रेंडशिप डे के बारे में बात कर रही है, तो जाहिर सी बात है दोस्त के बारे में ही बात कर रही होगी। लेकिन नहीं, मैं कोई दोस्त के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। हाँ, हो सकता है कि अब वो आपके जिंदगी का पहला दोस्त हो, लेकिन वो दोस्त से थोड़ा सा ऊपर वाला रिश्ता है। वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज मैं बात कर रही हूँ बहनों के बारे में, क्योंकि आज अपेरेंटली इट इज ऑल्सो सिस्टर्स डे। यस, देखिए, अगर आपके घर में बड़ी बहन हो तो बचपन में शायद उसकी डांट बुरी लगती थी, है ना, लेकिन बड़े होकर समझ में आया कि वो सिर्फ बहन नहीं थी, वो आपकी ज़िंदगी में एक वॉर्म्थ की तरह आई थी, आपकी ज़िंदगी में आपको पेशेंस सिखा रही थी और घर की ना अनऑफिशियल सेकेंड मॉम भी कहलाती थी। पेरेंट्स के बाद अगर किसी ने आपको संभाला है, समझाया है, तो वो अक्सर ना बड़ी बहनें ही होती हैं। और अगर आपके घर में कोई छोटी बहन हो तो घर की एनर्जी कभी लो ही नहीं होती थी, आई एम श्योर। कभी उसकी शॉपिंग, कभी उसकी ड्रामा क्वीन वाली एंट्रीज, कभी उसकी एंडलेस कहानियां, लेकिन घर की सबसे लाउडेस्ट हंसी उसी की होती है। और अगर भाई बहन के रिश्ते के बारे में बात करें ना, तो उसमें आई हेट यू, मेरे चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, ये सारी चीज़ें ही होती है। और उसके बाद में ये हेट यू लव यू वाले रिलेशन से कब एक फिक्र पर पहुंच जाते हैं, एक दूसरे की फिक्र पर, ये पता ही नहीं चला, है ना। ये छोटी छोटी फिक्र में ही तो असली प्यार नजर आता है। तो आज सिस्टर्स डे है, अब चाहे वो आपकी बड़ी बहन हो या फिर वो छोटी बहन हो या फिर आपकी कजिन हो, तो आज ज़रूर कॉल कीजिएगा और बोला कि यार याद आई, और पुराने किस्से याद करो आपके बचपन के, स्पेशली आप जब यहाँ पर कतर में रहते हो। एंड आई एम श्योर आपकी बहन को मिलकर थोड़ा सा टाइम तो हो गया होगा, तो बस कॉल करो और खूब गप्पे लगाओ। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अगला गाना जो मैं बजा रही हूँ, दैट इज द टाइटल ट्रैक ऑफ दिल धड़कने दो। और मेरे ख्याल से बॉलीवुड में ना भाई बहन वाली जो जोड़ियाँ हैं ना, वो बहुत कम ही आई हैं, बट आउट ऑफ ऑल आई रियली लाइक्ड दिस। प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह इन दिल धड़कने दो। एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई। गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC। स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: कभी सोचा है हर इंसान जो हमारी जिंदगी में आता है क्या वो हमेशा के लिए रहने के लिए आता है? शायद नहीं। क्योंकि कुछ लोग हमारे लिए घर बन जाते हैं तो कुछ लोग बस एक पुराना चैप्टर। और बस इसी खूबसूरत ख्याल पर आज की शायरी लाई हूँ मैं।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, हर चेहरा जरूरी हो ये जरूरी तो नहीं, हर रिश्ता आखिरी हो ये जरूरी तो नहीं, हर चेहरा जरूरी हो ये जरूरी तो नहीं, हर रिश्ता आखिरी हो ये जरूरी तो नहीं, जो दिल से उतर जाते हैं उनसे शिकायत भी क्या, कुछ सफर बस याद रहने के लिए होते हैं, साथ रहने के लिए नहीं। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट, है ना? बहुत ही खूबसूरत बात है ये। हम अक्सर हर रिश्ते को हमेशा के लिए संभाल कर रखना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी अपना अलग ही खेल खेलती है। कुछ लोग हमें बस मोहब्बत सिखा जाते हैं, कुछ सब्र और कुछ अपनी अहमियत। जरूरी नहीं हर रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंचे, कभी कभी उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो हमें पहले से बेहतर इंसान बनाए। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood Bollywood Bold Only on Mirchi It's Hot.
1: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
2: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है. I think he is one of those people.
1: तृप्ति डिमरी spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Bold Bollywood Bollywood Bollywood Bold
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC. स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

देखो वक्त की रफ्तार का एहसास ना मुझे बिल्कुल इस समय पर होता है। देखिए जब भी ना शो खत्म होने के करीब आता है इस तरह से, और तब मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या झटाझट तरीके से ये 4 घंटे गुजर गए हैं। और जब भी मैं जाती हूँ ना, हमेशा आपके लिए कुछ एक अच्छा सा मैसेज देकर जाती हूँ कि कुछ ऐसा करो या ये हो या वैसा, ये वो फलाना ढिमकाना, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन ना मेरा कुछ ये नहीं होता है इंटेंशन कि आपको ज्ञान दूँ। ऑनेस्टली जब कोई आपको एडवाइस कर रहा होता है ना, एटलीस्ट मेरे तरफ से अगर कोई चीज़ आपके तरफ आ रही है ना, तो ये मत समझिए कि मैं बहुत ज़्यादा वाइज हूँ। आप ये समझ लीजिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करते आई हूँ और अपनी गलतियों से सीखी हुई चीज़ें ही आपकी तरफ लेकर आती हूँ। तो बस इसी के साथ आज के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बस हमेशा यार इग्नोर करते रहो। जितने हो सके आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आपको पर्सनली इफेक्ट नहीं करती है ना, तो बस छोड़ दो, आगे बढ़ो, लेट इट बी, लेट इट गो, एंड यू विल फील सो लाइटर। इतना बोझ लेकर हमें जाना ही कहाँ तक है। बस जितना हल्का आपका सर पर वो एक बोझ रहता है ना कि यार एक्सपेक्टेशंस का बोझ, एक्सेप्टेंस का बोझ, ये सब कुछ छोड़ दो यार, आगे बढ़ो। बहुत लंबा रास्ता जाना है हमें, है ना। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, और सच कहूँ बस जो दिल में मेरे होता है ना, मैं वही अपने जुबान पर लेकर आती हूँ हर रोज यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहो। टाटा बाय बाय, सायोनारा, और सुनते रहेगा मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, एक चीज लेनी होती है, पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ये तो गलत है, अगली बार से एक ही लाना, क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।
2: रख रख

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: भाई गाना पसंद आने के लिए इतने प्रोसेसेस तो नहीं होते।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप और हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सिंगर एंड कंपोजर अमाल मलिक ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे मैं तो इत्तेफाक नहीं रखती हूँ यार। सो बेसिकली इमरान हाशमी की मच अवेटेड फिल्म आवारापन 2 में अमाल मलिक ने अपना म्यूजिक दिया है और इस फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी कुछ दिनों पहले जो रिलीज हुआ जिसको लेके अरिजीत सिंह के कमबैक की भी बात हुई थी। वेल आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट, बट फिलहाल अमाल मलिक की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई उनके इस गाने उस एल्बम को लेकर उनके जो राइवल लोग हैं ना वो पेड पीआर कर रहे हैं और उनके गाने को उनके साउंडट्रैक को अटैक कर रहे हैं। बट यार अमाल अगर ये बात सच है तो मेरे पास तो पैसे नहीं आया यार, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे ये गाना कुछ खास समझ नहीं आया। एंड उससे भी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इज द थिंग जो आपने कहा। सो अकॉर्डिंग टू अमाल मलिक एवरी सॉन्ग नीड्स टाइम टू ब्रीद। उनके हिसाब से इंसान के सिस्टम तक दिल तक पहुंचने के लिए ना उसको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है ऑडियंस के बीच। बट कसम से जिस दिन ये गाना आया था उस दिन सुना मैंने, उसके बाद 2-3 दिन लगातार सुनने की कोशिश की कि क्या पता अब पसंद आए। बट सॉरी सर, दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एन इमरान हाशमी एल्बम। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: One more email.

0: It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो बहन जी।
2: हाँ जी।
1: ये एक सेकंड, ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
2: आप, आपके घर में कोई नहीं है क्या?
1: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो। एक सेकंड बेटी, चुप।
2: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
1: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगे? एक सेकंड सर। आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटो, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
2: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
1: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ इधर आओ, देखो मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
2: उतार लीजिए।
1: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
2: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
1: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड,
2: देखिए सुसु करा होगा उसने। देखिए,
1: हाँ सुसु ही करा है, सुसु करा है। चल
2: उतार दीजिए।
1: एक सेकंड, उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही है। क्लैपिंग करो।
2: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
1: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
2: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
1: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah live.

साथ पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: लगे।
1: बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: वेल, इस बात में एक बार फिर से विश्वास दिला दिया है आप में से ही किसी एक इंसान ने। सो बेसिकली इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्म ची। हाँ, यू नो द ड्रिल। आपको मेरे इंस्टा डीएम में जाके अपना नंबर भेजना होता है, देन आई कॉल यू एंड प्ले दिस गेम विद यू, जिसमें अगर आप अव्वल करते हैं तो डेफिनेटली आपको मिर्ची फिल्म ची का टैग मिलता है। बट अगर नहीं हुआ तो फिर वो गेम आगे किसी और के साथ खेला जाता है। सो सबसे पहले मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे कौन है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ निर्मल जी। क्या आप मेरे साथ ये बॉलीवुड गेम खेलेंगे?
4: हाँ मैम, बहुत ज्यादा टफ पूछते हो आप, बहुत ज्यादा पता नहीं ठीक है।
1: नहीं नहीं, मैं कोई टफ क्वेश्चन
4: नहीं आता है, लेकिन जब नाम नहीं बता पाते ना, मुझे बहुत मजा आता है।
1: ओहो, तो देखते हैं आज आप कहाँ तक पहुँचते हैं इस गेम में। शुरू करूँ?
4: बिल्कुल बिल्कुल।
1: करीना कपूर का जीरो फिगर किस फिल्म में था?
4: हलकत जवानी।
1: अरे नहीं, उन्होंने सबसे पहली बार अपना वेट लूज किया था फॉर दैट पर्टिकुलर फिल्म।
4: फिल्म का नाम बताना है?
1: हाँ हाँ, फिल्म का नाम बताना है आपको कि करीना कपूर का जीरो फिगर किस फिल्म में था।
4: नहीं पता मैम।
1: अब बताइए, आप तो पहले बॉल पे ही बोल्ड हो गए।
4: चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक्स टू यू टू निर्मल जी। बट कोई नहीं, अगर आप में से जो फिलहाल मुझे सुन रहा है वो इस गेम को आगे खेलना चाहता है तो MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति के नाम से मुझे इंस्टा पे ढूंढिए, मेरे DM में जाइए एंड सेंड मी योर नंबर। बाकी तो मैं ध्यान रख लूंगी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
3: The elegance and this and that, everything inside is me is like a mad person. And I love mad comedies. And I love these kind of situations which are like larger than life. वो कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ, अजीब से कैरेक्टर्स हैं सब, यू नो, सब पागल अनहिंज्ड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स।
2: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
5: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
6: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। भाई, हनुमान जी के बिना रामायण पूरी हो सकती है नहीं ना, तो फिर ये ट्रेलर कैसे कंप्लीट हो गया? वेल, मैं बात कर रही हूँ नमित मल्होत्रा प्रोडक्शन एंड नितेश तिवारी डायरेक्टोरियल अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड मैग्नम ओपस रामायण के बारे में, जिसका ट्रेलर कल आया। एंड भाई, इस ट्रेलर को ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया गया है, यानी कि सुबह के 4:15 पे। वैसे मूवी में रणबीर कपूर बने हैं राम, साई पल्लवी बनी है सीता, यश बने हैं रावण, रवि दुबे लक्ष्मण एंड सनी देओल लॉर्ड हनुमान। लेकिन भैया, ये जो ट्रेलर 4 मिनट का आया है, उसमें एक जगह भी हमारे पवन सुत हनुमान की झलक तक नहीं दिखाई गई है। ना टीजर होगा, ना मोशन पोस्टर। संजय लीला भंसाली के प्लान्स कुछ अलग ही चल रहे हैं उनकी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म लव एंड वॉर के लिए, जिसमें रणबीर कपूर के साथ साथ आलिया भट्ट और विकी कौशल लीड रोल्स में नजर आएंगे। सो अगर रिपोर्ट्स की माने तो संजय लीला भंसाली कुछ हटके प्लान कर रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ द फिल्म, इसीलिए उन्होंने एक स्पेशल प्रमोशनल एसेट क्रिएट करने की प्लानिंग की है, जिसको वो अगस्त तक रिवील भी करेंगे। और जैसे ही ये डेट्स मुझे पता चलेंगे आपको जरूर बताऊंगी। दायरा नहीं, इंसान की जिंदगी वाले दायरे की बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड मेघना गुलजार डायरेक्टोरियल, जो एक क्राइम थ्रिलर है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। मूवी का फर्स्ट लुक इज ऑलरेडी आउट एंड इसको इसका रिलीज डेट भी मिल चुका है, विच इज 18th of September 2026। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स

गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC। स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची द मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव।

0: फाइंडिंग मिर्ची फिल्म जी।
1: श्रुति मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून हो आप एंड जो मुझे शो को रोज सुन रहे हैं उनको डेफिनेटली पता है कि ये फाइंडिंग मिर्ची फिल्म जी क्या है। बेसिकली मैं हर रोज एक गेम खेलती हूँ, देयर इज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट आई आस्क, बट द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना होता है, आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, वहां मेरे DM में अपना नंबर भेजना होता है, मैं आपको कॉल करती हूँ एंड देन वी स्टार्ट द गेम। सो कुछ देर पहले मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे थे निर्मल जी, अब मेरे साथ कौन? ऑल राइट, तो आपको क्या पता है कि करीना कपूर खान ने किस फिल्म के लिए अपना जीरो फिगर बनाया था?
2: टशन।
0: क्या बात है, टशन फिल्म का कौन सा एक्टर पहले शेफ था?
2: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें वो छिछोरे फोटोग्राफर बने हैं?
2: गरम मसाला।
0: क्या बात, गरम मसाला में इनके कुक का रोल किसने प्ले किया था?
2: परेश रावल।
0: परेश रावल की फिल्म जिसमें उनका नाम बाबू राव है?
2: हेरा फेरी।
0: हेरा फेरी 1 की फीमेल एक्टर का नाम?
2: तबू
0: की फिल्म विद करीना कपूर?
2: तबू की फिल्म विद करीना कपूर।
0: नहीं आता है तो एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं आता है फिर।
2: Just trying.
0: सर बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं कॉल पे।
2: नहीं आता।
0: ऑल राइट, बट इट वॉज ग्रेट हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन एंड प्लेइंग दिस गेम, थैंक यू सो मच।
2: ओके,
0: तो इतने ताबड़तोड़ सवालों का जवाब देना भी कोई छोटी बात नहीं होती, इसलिए मयंक जी आज आप बने हैं हमारे
1: मिर्ची फिल्म जी।
0: Congratulations! तो अगर आपको इस गेम में मजा आया तो यू नो द ड्रिल, कल फिर से इस गेम के साथ वापस आऊंगी, बट अभी तो फिल्मी बातचीत बहुत सारी बाकी है मेरे दोस्त। So stay tuned to मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
1: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

0: एक्ट्रेसेस की कोई आइडेंटिटी नहीं होती क्या?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नहीं नहीं नहीं बाबू मोशाय, इससे पहले कि आप मुझे जज करें, लेट मी टेल यू, ये बात पर्सनल लेवल पे नहीं प्रोफेशनल लेवल पे कर रही हूँ मैं। आई मीन जब हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस किसी फिल्म में कास्ट की जाती हैं, तो उनके कैरेक्टर को अच्छे से बिल्ड क्यों नहीं किया जाता? अल्टीमेटली मेल कैरेक्टर के आर्क को कंप्लीट करने के लिए वो जो फीमेल कैरेक्टर है उसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, आपको नहीं लगता? अरे भूल गए, फिल्म ब्रह्मास्त्र में कैसे शिवा शिवा करती फिर रही थी आलिया भट्ट, वो भी एक स्ट्रेंजर के लिए जिससे बस कुछ मिनटों के लिए मिली थी वो, एंड देन शी फेल इन लव विद हिम, एंड उसके बाद उसके सुपरनैचुरल इश्यूज को डील करते हुए अपनी पूरी जिंदगी उस पे न्योछावर कर दी। तो बस इसी के मद्देनजर आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी ही फीमेल कैरेक्टर्स की बात हो रही है। लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे तू झूठी मैं मकार से श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में, जो हमेशा से एंटी जॉइंट फैमिली पर्सन होती है बट बाय द एंड ऑफ द मूवी प्रो जॉइंट फैमिली बन जाती है, और ये चीज सिर्फ 15 मिनट में कंप्लीट कर दिया है लव रंजन साहब ने। कसम से जब ये मूवी देखनी शुरू की थी ना मैंने, देन आई वाज हैप्पी कि चलो कोई तो एक फीमेल कैरेक्टर इनकी मूवी में एंबिशंस के साथ आई, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी थी, आइडेंटिटी थी, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी ये सारी चीजें मटिया मेट हो गई। कसम से अगर इस मूवी को इस पॉइंट पे खत्म करते कि रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर दोनों अलग अलग रह रहे हैं, देन आई वुड हैव बीन मोर देन हैप्पी। खैर मेरी इस लिस्ट में और भी कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स की बात बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो.
3: हाय शिवानी.
2: हाय.
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ.
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं नहीं,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ू कु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन

0: Mirci, it's hot.
1: It's hot.
2: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल।
3: लव, लॉस और होप का म्यूजिकल सफर, वे जुनून।

गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: एक अम्बिशियस फीमेल कैरेक्टर को लव इंटरेस्ट में तब्दील करना जरूरी है क्या?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय। बात हो रही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, जहाँ लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है कि वो एक मूवी तो बनाए लेकिन उसमें हर बार वर्चस्व रहे तो सिर्फ और सिर्फ मेल लीड का। फीमेल लीड को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मतलब उसका पर्सोना तैयार किया जाता है अम्बिशन के साथ, आइडेंटिटी के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी प्लॉट एकदम से घूम जाता है और वो हीरो की लव इंटरेस्ट बन के रह जाती है। बस कुछ ऐसी ही कैरेक्टर्स की लिस्ट निकाली है आज, जिसको डिस्कस कर रही हूँ इन माय पांच का पंच की लिस्ट, जहां सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट फिल्म तू झूठी मैं मक्कार से श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में। अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म नमस्ते लंदन से कैटरीना कैफ के कैरेक्टर के बारे में। हां जी, जैज का कैरेक्टर जिसकी शादी उसके मर्जी के खिलाफ की जाती है, उसके बाद उसको विलेन बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे लंदन में जीना चाहती है। बट फिर अल्टीमेटली टुवर्ड्स द एंड क्या होता है, कैटरीना को अक्षय कुमार से प्यार हो जाता है एंड इवेंचुअली वो सारी चीजों को गिव अप करके पंजाब के एक गांव में जाके सेटल हो जाती है। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर तीन पे बात करते हैं दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की, फ्रॉम द फिल्म ये जवानी है दीवानी। हंजी, नैना तो याद होंगी आपको। जिस हिसाब से बनी बोले तो रणबीर कपूर के कैरेक्टर को एक प्रॉपर आर्क दिया गया था, उसके उड़ने दौड़ने गिरने सारी चीजों को अच्छे से विजुअलाइज किया गया था, वो क्या दीपिका पादुकोण के साथ नहीं हो सकता था? उसके एस्पिरेशंस नहीं थे, उसका फ्यूचर नहीं था, वो कोई अच्छा काम नहीं कर रही थी। बट क्या ही कर सकते हैं, हिंदी फिल्म है भाई, यहां तो हीरो को ही वर्चस्व दिया जाएगा और हीरोइन को हीरो के कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करने वाली गुड़िया बनाया जाएगा। खैर, अगर मेरी इस लिस्ट में आप भी कोई मूवी ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से। मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchie.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो ट्रेंडिंग। भाई हनुमान जी की बिना रामायण पूरी हो सकती है नहीं ना, तो फिर ये ट्रेलर कैसे कंप्लीट हो गया? वेल, मैं बात कर रही हूँ नमित मल्होत्रा प्रोडक्शन एंड नितेश तिवारी डिटेक्टोरियल अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड मैग्नम ओपस रामायण के बारे में, जिसका ट्रेलर कल आया। एंड भाई, इस ट्रेलर को ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज किया गया है, यानी कि सुबह के 4:15 पे। वैसे मूवी में रणबीर कपूर बने हैं राम, साई पल्लवी बनी है सीता, यश बने हैं रावण, रवि दुबे लक्ष्मण एंड सनी देओल लॉर्ड हनुमान। लेकिन भैया, ये जो ट्रेलर 4 मिनट का आया है, उसमें एक जगह भी हमारे पवन सुत हनुमान की झलक तक नहीं दिखाई गई है। ना टीजर होगा, ना मोशन पोस्टर। संजय लीला भंसाली के प्लान्स कुछ अलग ही चल रहे हैं उनकी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म लव एंड वॉर के लिए, जिसमें रणबीर कपूर के साथ साथ आलिया भट्ट और विकी कौशल लीड रोल्स में नजर आएंगे। सो अगर रिपोर्ट्स की माने तो संजय लीला भंसाली कुछ हटके प्लान कर रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ द फिल्म, इसीलिए उन्होंने एक स्पेशल

أشهد أن لا

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: कुणाल खेमू, एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
3: मुझे एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम, आई डोंट रिमेंबर माय ड्रीम्स, मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक विच इज अ गुड थिंग क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते, तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की।
2: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते, हर दिन की नई शुरुआत। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi.
8: In association with Dairy Queen, beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen. And Papa John's, enjoy double delight offer. Two small pizzas at 44, two medium pizzas at 66, two large pizzas at 99 Rial. Papa John's, better ingredients, better pizza.
5: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
9: Visual media partner, Rehab Media.
5: Production partner, Symphony.
10: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
11: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
12: बार बार।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6
14: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: बिना हीरोइन के हीरो का कैरेक्टर आर्क कंप्लीट नहीं हो सकता क्या?
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: कसम से यार बाबू मोशाए, कभी कभी तो ऐसे ही ख्याल आते हैं क्योंकि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इस चीज से प्यार है। मतलब अगर वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसमें एक स्ट्रॉन्ग हेडेड फीमेल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया तो उसको सस्टेन कर ही नहीं पाते ये, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द मूवी उसके एम्बिशन, उसकी सारी इच्छाओं को साइडलाइन कर दिया जाता है और हीरो के कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करने के लिए उसको हीरो का बस एक लव इंटरेस्ट बना के छोड़ दिया जाता है। आज कुछ ऐसी ही फीमेल कैरेक्टर्स की हो रही है बात थ्रू माय 5 का पंच लिस्ट, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट तू झूठी में मकार से श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में। नंबर 2 पे हमने बात की नमस्ते लंदन से कैटरीना कैफ के कैरेक्टर के बारे में। नंबर 3 पे हमने बात की ये जवानी है दीवानी से दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के बारे में। अब 4 पे बात करते हैं अनुष्का शर्मा के कैरेक्टर के बारे में फ्रॉम द फिल्म जब तक है जॉन, क्योंकि भैया जब तक मैडम शाहरुख खान से प्यार में नहीं पड़ती हैं, बोले तो समर से प्यार में नहीं पड़ती हैं, तब तक अकीरा की जिंदगी बड़ी ही इंडिपेंडेंट सी, क्वर्की सी, फ्री स्पिरिटेड सी चल रही होती है। वो एक मस्त डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर होती है जिसको समर से जैसे ही प्यार होता है वो अपनी सारी चीजें भूल के समर के पर्सनल ग्रोथ के बारे में, उसके लॉन्ग लॉस्ट लव बोले तो कैटरीना कैफ से मिलाप कराने के बारे में सोचने लगती है, एंड दिस इज हाउ शी हैप्पीली एग्जिट्स द मूवी एज वेल। खैर लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आलिया भट्ट के कैरेक्टर के बारे में, जो इनिशियली काफी कंपीटिंग होती है। हाँ जी, वो जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी होती है उसके लिए काफी जद्दोजहद करती है बंदी, बट जैसे ही उसको प्यार होता है वो कॉम्पिटिशन को अबैंडन कर देती है। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाती है कि भैया इन दोनों गाइस में से मेरे लिए कौन सा सही है। मतलब वाजंट इट आउटराइट स्टूपिड? खैर अगर मेरी इस लिस्ट में आप भी कोई फिल्म ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
1: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Alu Lelo Kanda Lelo Bollypedia. Bollypedia. एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म वेलकम ला ला ला ला ला ला वेलकम ला ला ला ला ला ला ला. अनीस बाजमी डायरेक्टोरियल ये फिल्म जो साल 2007 में रिलीज हुई थी एंड क्या ही मूवी थी यार. फिरोज खान, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, परेश रावल, भाई साहब, अमेजिंग परफॉर्मेंसेज बाय ईच एंड एवरी पर्सन. सो यू नो वॉट, इस मूवी के रिलीज के पहले ना पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पे अक्षय कुमार और अनिल कपूर के बीच में कुछ इश्यूज हो गए थे एंड द रीजन वाज कि अक्षय कुमार को लग रहा था कि वो मेन लीड है मूवी के तो उनका नाम पहले क्रेडिट स्कोर में आना चाहिए. वहीं अनिल कपूर को लग रहा था दैट भाई वो सीनियोरिटी में आगे हैं तो उनका नाम अक्षय कुमार के पहले आना चाहिए. बस इस बीच में अनीस बाजमी घुसे जो फिल्म के डायरेक्टर हैं और उन्होंने फिरोज खान साहब का नाम सबसे पहले क्रेडिट्स में दिया सेइंग दैट ही इज द मोस्ट सीनियर पर्सन इन द कास्ट मेंबर. तो इतने बड़े बड़े स्टार्स भी अपने नाम को लेकर लड़ाई करते हैं यार. और वहां शेक्सपियर थे जिन्होंने कहा था व्हाट्स देयर इन नेम. खैर आयरनी है ये. बाकी ऐसी ही किसी फिल्म के बारे में आप कोई ट्रिविया जानना चाहो तो उसका नाम मुझे बता सकते हो. हाँ, MIRCHISHRUTI दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके. मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.
1: मिर्ची फ्रेश माल.
2: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है. उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन.

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: कोई पैकेट आई है, गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
0: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, तो ना लाल रंग पेंट हुआ है।
0: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको। आपका गड्ढो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
0: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी चौड़ी तो रोड होगी।
1: कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
0: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं मैं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
0: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन,
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है। वो
0: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
0: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आपको ऊपर ले रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
0: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
0: रुकिए, आशीष भार्गव सर, आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
0: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी, आप अभी कहाँ रहो?
0: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, इसको परेशान हूँ मैं, जो हर साल का रिटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
0: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
0: थैंक यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन, बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC। स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची। The mentalist Suhani Shah.

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: आपका

0: Dairy Queen and Papa John's. Enjoy double delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 rial. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony. घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
4: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मुझे दूसरी कैटेगरी से निकलने का उपाय बता दो यार।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और आज जिंदगी में पाए जाने वाले दो प्रजाति के रिप्लाई करने वाले लोगों की बात करना चाहती हूँ एक बार फिर से। कई बार कर चुकी हूँ डिस्कशन, लेकिन खत्म ही नहीं होती यार, हर बार नई प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं लोगों के अंदर। सो द फर्स्ट टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस कैटेगरी आर जो किसी का मैसेज आने पे एकदम प्रॉम्प्ट होते हैं और फटाक द चटाक रिप्लाई करते हैं। मतलब इनके नजरों के सामने मैसेज आया नहीं कि इनके तरफ से विद इन अ फ्यू सेकंड्स एंड मिनट्स रिप्लाई आ ही जाता है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, ओ हो, भगवान ने बड़े फुर्सत में बनाया है इनको, क्योंकि इनको फुर्सत ही नहीं मिल पाती रिप्लाई करने के लिए यार। मतलब इस इंसान को अपने फोन पे नोटिफिकेशन दिखता है किसी के मैसेज का, उसको वो ड्रॉप डाउन में बस चेक कर लेता है, अच्छा क्या लिखा है बंदे ने या बंदी ने, और उसके बाद अपने दिमाग में ही रिप्लाई करके बस शांत बैठ जाते हैं ये। एक तो इनका टाइमली रिप्लाई नहीं आता, और जब आता है तो उसके बाद वापस एक हफ्ते तक गायब हो जाता है इंसान। और मुझे इनके बारे में इतने अच्छे से इसलिए पता है बिकॉज आई बिलोंग टू दिस कैटेगरी यार। किसी के पास उपाय है यहाँ से निकलने का तो मुझे जरूर बताएं। मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक या इंस्टा पे मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

अच्छा बताओ, कभी ट्राई किया है नो स्पेंड वीक? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और नो स्पेंड वीक क्या होता है, जहां पर आप ना अपने आप पर कंट्रोल करते हो और खर्चे नहीं करते हो, स्पेशली वो खर्चे जो जरूरत होती नहीं है, बस कुछ इंपल्स शॉपिंग होती है और इंपल्स बाइंग होती है कि चलो यार ले लेते हैं, ठीक लग रहा है, और बाद में रियलाइज करते हैं कि आई इसकी तो जरूरत थी ही नहीं हमें. तो कभी ट्राई करके देखो, एटलीस्ट एक हफ्ता ही क्यों ना हो, चलो आप और मैं ना ये हफ्ता मिलकर ट्राई करते हैं और करेंगे तो ही तो सेविंग कर पाएंगे और फिर ही तो हम एक्सचेंज रेट का फायदा उठा के हम पैसे भेज पाएंगे. जैसे आज का एक्सचेंज रेट कह रहा है, एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 26.16, वहीं जना पाकिस्तानी रुपीस इज एट 76.35, बांग्लादेशी टाका इज एट 33.98, श्रीलंकन रुपीस की अगर बात करें तो इट इज एट 92.12 एंड नेपाली रुपीस आपको मिल रहे हैं कतरी रियाल के बदले 41.70. ये थे आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां. खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला वन एंड ओनली 89.6 मिर्ची वन. और ट्राई करो नो स्पेंड वीक. मैं हूँ आफरीन आपके साथ अनवर्षी.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

वीकेंड नाइट शिफ्ट में फंसे थे अमिताभ बच्चन। आज मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। और एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म दीवार, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 1975, डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा साहब, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, शशि कपूर थे, नीतू सिंह थी, निरूपा रॉय थी। भाई साहब, ये मूवी अलग लेवल पे हिट भी हुई थी। एंड टॉकिंग अबाउट अमिताभ बच्चन इन द मूवी, सो बेसिकली इस फिल्म के साथ साथ वो फिल्म शोले की शूटिंग भी कर रहे थे। एंड दैट इज द रीजन फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन के जो सीन्स हैं वो मोस्टली इंडोर्स हैं या फिर रात के दौरान शूट किए गए हैं, बिकॉज सुबह में वो शोले की शूटिंग करते थे और रात को दीवार की शूटिंग करते थे, यानी डे एंड नाइट शिफ्ट। वहीं दूसरी तरफ बात करें फिल्म के राइटर डुओ सलीम जावेद की, तो भाई साहब, इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने यश चोपड़ा को फिल्म जंजीर के रिलीज के पहले सुनाई थी, ऑफर की थी और साथ ही डिमांड किया था 1,00,000 रुपए। बट यश साहब उनके ऊपर हंसे और कहे कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। बट आफ्टर जंजीर बिकेम अ ब्लॉकबस्टर, सलीम खान और जावेद अख्तर साहब एक बार फिर से यश चोपड़ा को अप्रोच करने गए विद द सेम स्क्रिप्ट, बट इस बार 1,00,000 के बदले उन्होंने 3,00,000 कोट किया। एंड गेस व्हाट, यश चोपड़ा गेव इट टू देम। दैट्स व्हाट योर वर्क डज। तभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कर्म किए जाओ, फल की चिंता ना करो, बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
3: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है। I think he is one of those people.
2: Tripti Dimri spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Hello, Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं
5: office के toilet में toilet paper white नहीं yellow लगाओ, profit आएगा।
4: relative से advice लो तो कहते हैं
6: काम को time दो, 25 घंटे काम करो, dark circles होंगे तो future bright होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ promotion fund के लिए, जिसके लिए आप 50% equity ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।
9: 89.6 89.6
10: मिर्ची।

0: यार इनके आने से तो शो की टीआरपी आसमान छूने वाली है।
1: ओटीटी एंड चिल।
0: अगर ये सच होगा तो मिर्ची पे ट्यून्ड इन हुआ, मैं हूँ आपके साथ श्रुति एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रियलिटी शो अलायंस, जिसमें सिर्फ एक हफ्ता रह गया है फॉर द ग्रैंड फिनाले। सो द रिपोर्ट सजेस्ट दैट अलायंस के सेट्स के आसपास हमारे सलमान खान बोले तो बॉलीवुड के भाई जान नजर आए थे। एंड माइंड यू, इस रियलिटी शो में सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान भी एज अ कंटेस्टेंट है। एंड जिन रिपोर्ट्स की मैं बात कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग सलमान खान अलायंस हाउस में घुसने वाले हैं अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। बाकी विदाउट एनी फर्दर अडू, क्योंकि एक हफ्ता रह गया है इस शो के ग्रैंड फिनाले में, अभी के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए दो शब्द बोलना चाहूंगी मैं। सबसे पहले वंशज, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कुशाल, सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन चाइल्ड। सोहेल खान इन द हाउस इज द गुड बॉय खान। अली गोनी इज मैनिपुलेटिव। अरसलान गोनी इज एंक्शियस। जैद दरबार भाई सारी लड़कियों के आगे पीछे ही नजर आता है ये इंसान, कभी उनका हाथ पकड़े हुए, कभी उनको टच करते हुए। कसम से लॉकअप के राम कपूर की वाइब है इनके अंदर। मुझे तो लगता है जब ये बाहर आएंगे तो शायद गौहर खान इनको पीटने वाली है। मूविंग ऑन, पायल गेमिंग भाई, शी इज अ स्ट्रेटजी क्वीन। ये बात और है कि इनके साथ कोई सपोर्ट में कभी खड़ा ही नहीं होता। अबाउट अगू, ही सीम्स लाइक अ बदतमीज बुल जिसको लाल कपड़ा दिखा दिया गया है और ये सींग लेके बस निकल पड़ा है। डेजी शाह अकॉर्डिंग टू मी इज द स्केप गोट फॉर सोहेल खान, क्योंकि शायद ये इस हाउस में सिर्फ उनको बचाने के लिए ही आई हैं। अबाउट नीति, शी इज द क्यूट फैशनिस्टा हु इज अ ग्रेट टास्क परफॉर्मर। रूही फॉर मी इज अ जेन्युइन सोल जो बहुत ही अल्टीमेट लेवल की प्लेयर भी है। एंड द क्वीन ऑफ द अलायंस हाउस अकॉर्डिंग टू मी इज मिनी माथुर। डे वन से जिस हिसाब का गेम खेला है बंदी ने, ओ हो हो हो हो हो हो। बाकी अगर आप अलायंस फॉलो कर रहे हैं तो आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, डू लेट मी नो अबाउट दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC। स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची द मेंटलिस्ट सुहानिशा।

0: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: वो ना, वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं, वो जल ही जाते हैं। और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
0: क्या करूं का क्या मतलब है? जलने वाले तो जलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: साले का खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना, उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना ए सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sarah, की 90s की याद का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। Actually, जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था। तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओ नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा। पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सर है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है, मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं।
0: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर, नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: सर कुछ गा के सुनाएगा?
0: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज।
0: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कोंडा में कौन से गाने
0: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, मन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया।
1: सर साहब
0: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा।
1: सुन ले बात,
0: मेरी बात
1: सुन पहले बात।
0: हाँ सर,
1: और बंद करिए, बिन बिन जो बजा रहा है तो ये बंद कर
0: रहा सर, बोलिए।
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
0: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
2: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: सफेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: पटाक।
2: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
3: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
0: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
4: कम है के?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: 89.6 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी, इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सब के सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं। ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार, तभी तो वेलकम की इतनी कदर है। लेकिन बताइए क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी। एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी। इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई। हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी। मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे। एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है। मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम। एंड यू नो व्हाट, एक बड़ी इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था, यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम। किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम। लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था। एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाड वाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है। एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम। और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म। फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए। फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम। आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार। दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए, प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए। जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़ी इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश्ड टू द हॉस्पिटल। लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Amit Trivedi, studio hai, guitar hai, mahol hai. Rukein kis liye aap?
3: होने दो बतिया सीने में दिल सॉरी वन मोर टेक प्लीज
2: टेक एज मेनी टेक्स एज यू वांट अमित त्रिवेदी हम तो सुनते रहेंगे मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट पासवर्ड या परमिशन के एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची
5: In association with Dairy Queen, beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen and Papa John's. Enjoy double delight offer. Two small pizzas at 44, two medium pizzas at 66, two large pizzas at 99 Rial. Papa John's, better ingredients, better pizza.
4: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
6: Visual media partner, Rehab Media.
4: Production partner, Symphony.
7: Our business is our business. None of your business.
8: But Didi, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
6: entertainment. Qatar ka number one radio station.
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी। टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। DD1 पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था, गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गई यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छिड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello, Ben ji.
1: हाँ जी.
2: ये एक सेकंड. ये बहन जी, अब आपके पड़ोस में रहते हैं, ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है. वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है. अगर
1: आप... आपके घर में कोई नहीं है क्या?
2: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं. तो आप थोड़ा.
1: हेलो.
2: हेलो. हेलो बहन जी.
1: हाँ जी.
2: ये एक सेकंड. ये बहन जी, अब आपके पड़ोस में रहते हैं, ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है. वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है. अगर
1: आपके घर

0: लाएंगी, मामा आएंगी, चीजी लाएंगी, चीजी लाएंगी, बेटे चीजी लाएंगी। नहीं चुप हो रहा, आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
1: नहीं नहीं हाँ। इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
0: एक सेकंड, इधर आओ इधर आओ, हाँ इधर आओ, देखो देखो मामा, मामा आ गई, मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ डायपर गीला है जी इसका,
1: उतार लीजिए उसको।
0: एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुकिए, ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
0: अच्छा ये बेब है। एक सेकंड
1: डायपर देखिए, सुसु करा होगा उसने। अच्छा। देखिए
0: हाँ सुसु ही करा है, सुसु करा है। चल
1: उतार दीजिए।
0: एक सेकंड उतार दिया। मैं जी मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो देखो आंटी कर रही है, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी आप सही कह रही हैं, रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया। अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
3: या वांट टू फील दैट, कम ऑन गर्ल, बी द बीट।

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
1: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
2: दोनों मिलेगा।
3: का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
4: 89.6
5: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम आपके एक और एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक और देखे क्या
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार जज करना है तो जज कर लो, मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद है। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है। सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए और धिकताना गाना वहीं से शुरू होता है, राइट। एंड जब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती हैं कि लड़का हुआ है, एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते, दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi.
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
5: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: I'm not too sure आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म नहीं, लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन, यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का, वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

0: क्यों जिस्म थर थर आए कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
2: यू नो, आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, बट नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती. तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी. अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है. तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं. यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, बट तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी.
1: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं. चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
4: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
5: कैसे रुक सकता है?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, एक चीज लेनी होती है, पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ये तो गलत है, अगली बार से एक ही लाना, क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।
2: राक, राक।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं 3।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज का के ड्रामा का डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2000s का के ड्रामा.
2: आज की बात 90s के साथ.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ऐसा नहीं है कि हम 90s किड्स के ड्रामास नहीं देखा करते थे. हम तो के ड्रामास तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे इन के ड्रामास को इंट्रोड्यूस करने. और हमारे लिए के ड्रामास यूज्ड टू बी एकता कपूर के सीरियल्स जो के से ही शुरू हुआ करते थे. राइट फ्रॉम क्यों की सास भी कभी बहू थी टू कुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट. और हमने ये के ड्रामास देखे हुए हैं. फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामास में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे और आज के ड्रामास में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: यहाँ की लड़की

बाबा, हाय शर्मीली बाबा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय।
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार?
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
1: फेवर,
2: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शाब, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
2: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले।
2: शराब, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
2: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3।

0: काम करना। शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी मेरी बात सुनो,
1: नहीं नहीं
0: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार।
2: जुबी शरा वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear TV के शटर वाले कैबिनेट,
2: यादों को चिट्ठी।
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के। हमारे घर में नहीं थे, लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ। वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है। मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं नहीं, बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था, लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छुपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी। तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था। बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार। आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं, बेबाक और बिंदास। तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. With Mirchi.
4: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
5: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Oof, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं. कौन सा सवाल? भाई कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना. बट डू यू नो, इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है. बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया. और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक, संदीप चौटा. और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देख कर होने लगा कुछ ऐसा असर, खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ, दिल मेरा है वहाँ. तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे, सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे. स्टे ट्यून टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
3: The elegance and this and that, everything inside is me is like a mad person. And I love mad comedies. And I love these kind of situations which are like larger than life. वो कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ, अजीब से कैरेक्टर्स हैं सब, you know, सब पागल, unhinged kind of characters.
2: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
5: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
2: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
1: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल।
1: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: ये जुनून तो फिलहाल हमारे सूरज चाचू पे चढ़ा है, जो गर्मी लगने चला तू टाइप दे रहे। 89.6 मिर्ची 1 पे सूरज चाचू हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हो, मतलब यार गाड़ी तंदूर बनी हुई है, मौसम ऐसा करके रखी हो कि इंसान चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहा, और निकल रहा है तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि शाम होती है सुबह होती है, ऐसा लग रहा है दिन भर दोपहर ही रहती है। 4:05 के करीब का टाइम।
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: खैर मौसम का क्या है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और एक दिन यहाँ से धीरे धीरे गर्मी भी ठंडी बदलने लगेगी, क्योंकि वही तो प्रकृति का रूल है भाई, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी भयंकर गर्मी कभी चौचक गर्मी। तो फिलहाल अभी चौचक वाली, जिसको बोले तो भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, पर याद रखिए पानी पी पी के गर्मी को कोसना है, तभी ये गर्मी हमसे दूर जाएगी। वकरा से लेकर अलखोर तक, लुसेल से लेकर सीपोर्ट तक, भैया बहुत भयंकर वाली गर्मी है, पर घबराइए नहीं, कानों की गर्मी बढ़ाने आ गया है मस्त मौला गौरव लेकर बातों की दुकान। शाम शानदार शुरू करते हैं साहिबान मेहरबान कदरदान मिर्ची पर, क्योंकि आज फ्रेंडशिप वाला डे है, तो शुरुआत बंधुओं से होगी, क्योंकि हमारे सारे दोस्त हमारी जिंदगी में नमूने ही हैं। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virpa la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया
1: है
2: फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आ गए वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ऊपर ले रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, इसको परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।

0: कतर में रहते हैं, पांच पांच वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। मस्त मौला गौरव भैया, स्पीड पेंटिंग का ये नया कारनामा कर दिया है अल अमीन बिन अहमद दानिश ने। यस, 6 साल का एक कतरी रेसिडेंट जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है अपने काम से।
1: #974 मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, हम आपको बता दें ग्रेड 2 का स्टूडेंट है ये छोटा सा बच्चा, एंड 4 सेपरेट 20x20 एक्रेलिक कैनवस पेंटिंग में 26 मिनट 21 सेकंड में पूरी कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप मामला बना दिया। भाई ये लड़का कमाल कर रहा है, एंड वो दिन दूर नहीं जब हम पूरी दुनिया में हमारे कतर के इस छोटे नन्हे आर्टिस्ट को देखने वाले हैं। वेल बता दें, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, कलाम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड नोबल वर्ल्ड, ये सारे रिकॉर्ड इस बच्चे ने अपने नाम कर लिए हैं विद अ स्पीड पेंटिंग। बताइए भैया, हम तो जिंदगी भर पेंट कर करके थक गए, लेकिन हमसे एक पेंटिंग

पूरी ना बन पाई और ये बच्चा 20-20 मिनट में चार चार पांच पांच पेंटिंग कर रहा है। ये बताता है कि हमारे वहाँ अब दूसरा एमएफ हुसैन आ गया है 89.6 मिर्ची वन पर। वैसे हमारी हर पेंटिंग मॉडर्न आर्टी लगती थी क्योंकि किसी को समझ में आती नहीं, तो हम यही कहते थे मॉडर्न पेंटिंग मॉडर्न, तुम नहीं समझ पाओगे मिर्ची शॉट।

0: जब से झनकार सी है दिल के तार में तब से
1: खा रहे हैं सब खजूर, क्योंकि चल रहा है सूक्ष्म वाकिफ में खजूर का फेस्टिवल। मस्त मौला गौरव आपके साथ है और भारी संख्या में खजूर खरीदे जा रहे हैं हजूर और खूब खाए भी जा रहे हैं। 11th लोकल डेट फेस्टिवल सूक वाकिफ में अब तक 38,000 विजिटर्स यहां जा चुके हैं। पहले 6 दिनों में ये नंबर है और इस दौरान 76,500 किलोग्राम ऑफ अलग अलग वेराइटी ऑफ डेट्स ये सोल्ड आउट हो गए सर। Yes, और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि कह सकते हैं ये खुद कहा है अहमद सालेम आल यैफी साहब ने, ये कि एग्रीकल्चर एडवाइजरी एंड सर्विस सेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी के हेड हैं और इन्होंने जब कहा है तो आई एम श्योर कि जबरदस्त पैदावार हो रही है। 125 लोकल फार्म इसमें एक तरह से साथ आए थे। इसके अलावा कतरी डेट्स के अलावा यहां पर और भी सीजनल फ्रूट्स मिल रहे हैं, फिग्स, बनानास, पपाया, आलमंड्स, ये सब कुछ अगस्त 10 तक आप यहां जा सकते हैं। अभी भी आपके पास मामला है सीजन के जो फेस्टिवल वेजिटेबल्स हैं। उसके अलावा वहां पर आपको खलास, खुनैजी, बरही, शीशी, ये सारे खजूरों की वैरायटी भी मिल रही है। तो क्या कर रहे हैं वीकडेज में 4 से 9, वीकेंड्स पर 4 से रात 10 बजे तक ये जबरदस्त तरीके से डेट्स बिक रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पाम ट्री को, यानी कि डेट पाम ट्री को लगाने में 4 से 8 साल का टाइम लगता है और जब ये बिल्कुल अपने फुल कमर्शियल प्रोडक्शन पे पहुंचता है तो 30-40 दिनों में इसमें लगने लगते हैं खजूर और फिर वो पक के नीचे गिरते हैं और फिर हजूर से बटोर लेते हैं। वैसे बता दें 4 से 8 सालों का एक सीड साइकिल है जो कि आपको दिखाई पड़ेगा, उसके बाद फुल हार्वेस्ट पहुंचने में भी 7 से 10 साल लगते हैं। तो जो ये आप खा रहे हैं ना खजूर, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है, उस बगीचे को सींचने वाले के, उस फार्म को सींचने वाले सभी माली भाइयों को भी दिल से थैंक यू जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं और हमें बेहतरीन वैरायटी ऑफ खजूर खाने को मिलते हैं। 89.6 मिर्ची 1 इट्स ऑल।

गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC। स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची, द मेंटलिस्ट सुहानिशा।

0: creation with Dairy Queen. Beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen. And Papa John's. Enjoy Double Delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 Rial. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. Supply.
4: Dosti kai kuch sulay madam. No sorry, no thank you.
5: Bhai saab, sorry and thank you. Hame dosti nahi, entertainment chahiye.
6: To mirchi suno na, jahan entertainment khoob milega. Khoob milega.
7: Qatar ka number one radio station.
8: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

0: किस्सा आप कुछ भी लिखे, लेकिन सूरज चाचू जो गर्मी का किस्सा लिख रहे हैं वो किसी से छुप नहीं रहा है।
1: Trust me, दोस्तों, it's like अभी अगस्त का सेकेंड डे है, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, I'm sure है आंटी, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। ऋतिक रोशन की आवाज में मैंने कोशिश की है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
1: ओ यस, गर्मी काफी ज्यादा है, 46 डिग्री सेल्सियस दिन का मैक्सिमम तापमान, और अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं आपको बता दूं कि 31 डिग्री नीचे में जाएगा तापमान, 31 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, 31 के बाद अगर हाईएस्ट की बात करी जाए तो 46 आज दोपहर में भी छू के गया है। एंड भाई, अगले कुछ दिनों तक टेम्परेचर ऐसे ही हाई रहने के आसार हैं। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं, बिल्कुल सूरज चाचू की गर्मी के आगे किसी काम ना आए, तो बस इतना ही कहेंगे, ह्यूमिडिटी को बर्दाश्त कीजिए, वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब ये गर्मी छटेगी और हमारे लिए सर्दी आएगी, लेकिन उसके लिए अगले 90 दिनों तक इंतजार करना है और पीपी के पानी सूरज चाचू को कोसना है कि हमने आपको दिल दिया, आप हमें गर्मी दे रहे हो, मिर्ची इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुणाल खेमू, एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
2: मुझे एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम, आई डोंट रिमेंबर माय ड्रीम्स, मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक विच इज अ गुड थिंग क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते, तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की।
1: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते, हर दिन की नई शुरुआत। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
5: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
4: योर स्पेशल ऑफर?
5: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है, ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
4: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
5: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
4: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
8: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
9: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah.

0: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
0: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

0: आप इस गाने को खाली गा देते, तेरी ये साड़ी बड़ी लग रही कमाल, तो लेडीज को फिर गुलाबी साड़ी खरीदनी ही नहीं पड़ती। अरे रुक जाओ, हमारा नाम लो। मतलब अगर संजू भाई ने ये कह दिया होता कि गुलाबी साड़ी का तेरी साड़ी में तू लग रही कमाल। फिलहाल के लिए मिर्ची खाई के टाइम 5:05
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: लेकिन अब क्या करेगा, भाई ने कह दिया गुलाबी साड़ी, तो दिलाइए मैडम को गुलाबी साड़ी, उसमें वो कमाल ही लगेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या लग रहा है, मेरे साथ तो टाइम हो गया खेलने का। पहचान कौन का बड़ा ही सिंपल रूल है, एक आवाज सुनाएंगे, आपको पकड़नी है ये आवाज है किसकी।
2: गब्बर सिंह बड़ा मशहूर कैरेक्टर हुआ था और आज तक उसके डायलॉग बच्चे भी दोहराते हैं और अक्सर ड्राइंग रूम्स में लोगों के बच्चों से वो डायलॉग सुनना पड़ता। देखिए मेरा तो ख्याल है कि हर दौर में फिल्में वो बनती हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है।
0: और मैं इतना ही कहूंगा हिंट के रूप में कि इनकी जो आवाज उसका एक भी तलफ्फुज जो है फुस नहीं होता है।
2: गब्बर सिंह बड़ा मशहूर कैरेक्टर हुआ था और आज तक उसके डायलॉग बच्चे भी दोहराते हैं और अक्सर ड्राइंग रूम्स में लोगों के बच्चों से वो डायलॉग सुनना पड़ता। देखिए मेरा तो ख्याल है कि हर दौर में फिल्में वो बनती हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है।
0: और ये कौन लोग हैं जो अभी से वॉइस नोट में जवाब भेजना शुरू कर चुके हैं। यस, इनके नंबर के आखिरी में आता है 067 और भाई साहब ने अभी सवाल भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, डीपीएल साहब ने भेज दिया अपना जवाब 5001896 पर। आप भी इनकी तरह तेज तर्रार साबित हो सकते हैं 5001896 पर। बताइए ये आवाज किसकी है।
2: गब्बर सिंह बड़ा मशहूर कैरेक्टर हुआ था और आज तक उसके डायलॉग बच्चे भी दोहराते हैं और अक्सर ड्राइंग रूम्स में लोगों के बच्चों से वो डायलॉग सुनना पड़ता। देखिए मेरा तो ख्याल है कि हर दौर में फिल्में वो बनती हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है।
0: और हम कह रहे हैं देखिए नहीं, अपनी आवाज भेजिए 5001896 पर, जल्दी जल्दी अपना जवाब भेजिए वॉइस नोट में और मैं अगली बार जवाब के साथ लौटूंगा। लेकिन फिलहाल देव नेगी पलक मुछल गाना लेकर मिर्ची पर।

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida, la burga. Energy, burga.
1: हेलो
2: हेलो मिस्टर गौतम,
1: कौन बोल रहे हैं?
2: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने? हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
2: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कौन से गाने
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। मैं एक पेशकश कर रहा हूँ। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
1: सुन ले बात सुन पहले। और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है। सर बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
2: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: Mirchi Morga. Navid ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, attack.
2: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
3: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
4: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
5: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah live.

0: देखिए अखिया लाल है तो ठीक है, हो सकता है बीपी बढ़ रहा हो, लेकिन लाल पीली एक साथ है तो जॉन्डिस भी होने के चांसेस है भैया। जीवन पर नाम हमारा गौरव, चले आए हैं बातें करने इस घंटे खेलते हैं वो जिसे कहते हैं यहाँ सुनाता हूँ एक आवाज और आपको बताना होता है कि गौरव अमा ये आवाज तो फलाने की है।
1: गब्बर सिंह बड़ा मशहूर कैरेक्टर हुआ था और आज तक उसके डायलॉग बच्चे भी दोहराते हैं और अक्सर ड्राइंग रूम्स में लोगों के बच्चों से वो डायलॉग सुनना पड़ता। देखिए मेरा तो ख्याल है कि हर दौर में फिल्में वो बनती हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है।
0: एंड इन्होंने कहा है कि हर दौर में फिल्में वो बनती हैं, गब्बर सिंह की बात की है। और यहाँ पर मैं एक हिंट देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का गलत जवाब आया है। हालांकि यूसुफ भाई आपका जवाब बिल्कुल सही है लेकिन मैं अभी नहीं प्ले कर रहा हूँ। 5001896 पर आपको बताना है कि हमारा गौरव ये तो फलाने की आवाज है। अब हिंट के तौर पर कलम के जादूगर है और इनका बेटा एक्टर है। जरा फिर से ध्यान से सुनिए।
1: गब्बर सिंह बड़ा मशहूर कैरेक्टर हुआ था और आज तक उसके डायलॉग बच्चे भी दोहराते हैं और अक्सर ड्राइंग रूम्स में लोगों के बच्चों से वो डायलॉग सुनना पड़ता। देखिए मेरा तो ख्याल है कि हर दौर में फिल्में वो बनती हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है।
0: एंड बड़ी ही कमाल की बात कही है कि ऑडियंस जो देखना चाहती है फिल्में वही बनती है, लेकिन राम गोपाल वर्मा की आंख जैसी फिल्में फिर क्यों बनती है? हम तो नहीं देखना चाहते। फिलहाल मस्मोलो गौरव आपके साथ एंड बहुत सारे लोग जवाब भेज रहे हैं, बहुत लोगों का गलत भी आ रहा है। 5001896 पर वॉइस नोट में तनी अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेज दो भैया, हम सभी को सुना दे कितने आदमी थे रे। फिलहाल एक आखिरी बार ये आवाज सुनिए, अगली बार तो जवाब के साथ ही लौटूंगा, भले ही गलत या सही मैं ही बताऊंगा।
1: गब्बर सिंह बड़ा मशहूर कैरेक्टर हुआ था और आज तक उसके डायलॉग बच्चे भी दोहराते हैं और अक्सर ड्राइंग रूम्स में लोगों के बच्चों से वो डायलॉग सुनना पड़ता। देखिए मेरा तो ख्याल है कि हर दौर में फिल्में वो बनती हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है।
0: एंड जैसे ही हिंट दिए हैं फटाफट से जवाब आने शुरू हो गए हैं जी। हिंट में आज यही कहा है कि ये कलम के जादूगर है और इनका बेटा एक्टर है। 5001896 ये नंबर है, कॉल कर नहीं बल्कि मैसेज कर बता दीजिए गौरव आप जो बोल रहे हो ना वो फला एक्टर है, अपनी आवाज भेजिए ताकि आपकी आवाज हम कतर के कोने कोने तक सुना दे जनाब। हाँ जी, अलखोर से लेकर लुसैल तक लोग सुनेंगे, बखरा से लेकर दोहा तक मुंतजा तक सबको आवाज सुनाई देगी। बस आप भेजो फटाफट अपने जवाब मिर्ची।

गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25 सितंबर एट QNCC। स्टे ट्यून्ड विद मिर्ची द मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव।

0: association with Dairy Queen. Beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen. And Papa John's. Enjoy Double Delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 Rial. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony. घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड. अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर. एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल. और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स. लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे. TNC अप्लाई.
3: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
4: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
5: बहुत कुछ होगा.
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: क्या जादू है रूप कुमार राठौड़ साहब की आवाज में यार।
1: मस्त मौला गौरव।
0: हम मिलेनियल्स इस पिक्चर का पूरा नाम नहीं लेते थे, हम इसे RSTDM बोलते थे, रहना है तेरे दिल में, इसी से गाना सुना दिया। एंड फिलहाल आपके दिल में कौन है वो जिसका नाम है
1: मस्त मौला गौरव।
0: यस देवी और सजनो, हम आगे इस घंटे खेल रहे हैं वो जिसे कहते हैं एक आवाज जाती है, आपको बताना होता है किसकी आवाज है।
2: गब्बर सिंह बड़ा मशहूर कैरेक्टर हुआ था और आज तक उसके डायलॉग बच्चे भी दोहराते हैं और अक्सर ड्राइंग रूम्स में लोगों के बच्चों से वो डायलॉग सुनने पड़ते।
0: देखिए 5000196 पर वॉइस नोट में बहुत सारे लोगों के जवाब आ गए।
3: गुड गौरव, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
0: ठीक है,
3: ये आवाज है जावेद अख्तर साहब की। ओके थैंक यू, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।
4: सलीम खान, आई एम नॉट
5: श्योर। हाय गौरव, ये आवाज है जावेद अख्तर, मेरा नाम राज मोहम्मद शेख।
3: ओके हेलो गौरव मेटी, हाउ आर यू, ऑल गुड। द वॉइस इन दिस डायलॉग इज फ्रॉम जावेद अख्तर।
6: ओके गौरव, this voice is of Javed Akhtar. Okay. I'm Ashu okay. Prasad.
7: Thank you, Ashu. Hey Gaurav, hope you are doing good.
0: Hi,
7: Sabiha baat kar rahi hu.
0: Ha Sabiha.
7: I'm not very sure, lekin ye Javed Akhtar saab ki awaaz ho sakti hai. Okay. Aapki hint ki wajah se bolti hu. Otherwise awaaz mein itne acche se samajh mein nahi aa raha.
0: Okay. Okay.
8: Good evening Gaurav. Salim bol raha hu. Ye awaaz hai Javed Akhtar saab ki hai.
0: Okay.
9: Hi, it's Javed Akhtar and Farhan Akhtar.
0: Bilkul sahi jawab hai, Javed Akhtar ki awaaz hai ye, lekin ek bhai saab ne kaha Salim, शायद वो इनकी बातों को सुन रहे थे। यस, जावेद सलीम की जोड़ी ने शोले जैसी फिल्म लिखी थी, लेकिन ये सलीम नहीं है, ये जावेद अख्तर हैं, फरहान अख्तर के पापा हैं। और मेरी हिंट से जिसने पकड़ा, सभिया जी आप बिल्कुल सही थी। यस एंड मस्त मौला गौरव फिलहाल आपके साथ। और कभी अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं ना किसी से छुपाता नहीं हूं, मैं बोलता हूं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, और गलती एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। आपसे क्या लग रहा है, कोई आपसे कहे नहीं तुम्हारी गलती है, अब आप उससे बहस किए जा रहे हैं, आपको बहस करने की जरूरत नहीं, आपको

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
3: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है. I think he is one of those people.
2: Tripti Dimri spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC. Stay tuned with Mirchi. The mentalist Suhani Shah, live in

0: तुम मिलो एक शाम को, फिर बैठेंगे कॉफी पियेंगे अपने यार को।
1: मस्त मौला गौरव।
0: फोन किया कि नहीं यार? आज फ्रेंडशिप वाला डे है, बोले तो दोस्ती का दिन, और दोस्ती का एक वसूल है, दोस्त आपको याद करे ना करे, आप उसे हर पल याद करें और कॉल कर करके परेशान करें। यार दोस्त आज की जिंदगी में ना यार बहुत पीछे छूट गए हैं, सब डिजिटल मीडिया वाले हो गए, तो असली वाले दोस्त को ना आज गले लग के हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोल दो, और अगर वो दूर रहता है तो एक वीडियो कॉल कर लो। चलो मैं याद दिला रहा हूँ, लेकिन अगर उसे पैसे भेज दिए तो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। मतलब अगर मेरा कोई दोस्त हो और मुझे अभी इस वक्त पैसे भेज दे, तो मैं ऐसा समझूंगा कि मेरी जिंदगी में इससे बड़ा गहरा दोस्त हुआ ही नहीं। फिलहाल एक कतरी रियाल के बदले अगर इंडियन रुपीज आप भेजोगे अपने दोस्त को, 26 रुपए 16 पैसे मिलेंगे आईपे ऐप पर, 26.16 INR। 1 कतरी रियाल के बदले लंकन रुपीज 92.12। वहीं तपाईको नेपाली रुपीज का रेट छो, 1 कतरी रियाल के बदले 41.70 का भल्चर रेट दाई, 41.70 का नेपाली रुपीज का रेट छी घर भेजन लाई सबसे सही टाइम छो। अगर इसके बाद हम पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब, वाहिद कतरे रियाल के बदले 76.35। एंड इसके बाद बांधु बांग्लादेशी टका बोलेगा दादा, एक्टा कतरे रियाल के बदले 33.96, तो 33.96 बाड़ी थी के पैसा भेजी दियो। मस्त मौला गौरव आपके साथ 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल, मिर्च हेल्पलाइन का नंबर है।
1: वो ना, वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं, वो जल ही जाते हैं और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
0: क्या करूं का क्या मतलब है? जलने वाले तो जलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: खोपड़ी तोड़ दे।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल,
1: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हाँ जी, विशाल मिश्रा ने गा दिया और हमने सुना दिया, आप भी गए आपके पास। फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त इज हैप्पी वाला फ्रेंडशिप डे। मिर्ची घड़ी में 6:05।
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: सजनों जब आ गए हैं तो गेम्स खेलने की बारी आ ही गई है।
3: वो बोली इंजीनियर से बात करो।
1: हाँ, बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट खिलाएंगे और आपको पूछना है, मतलब बताना है कि ये सीन है किस फिल्म का।
4: तू तो मेरा यार है, मैं तुझे मंजिल तक छोड़ूंगा।
5: मंजिल बस 2 गली दूर है, तू आराम से बैठो।
4: इतनी मेरी टली की भूल जाए असलम की गली।
6: खली बल्ली टली गली
4: टली गली इतने भी नहीं है टली, भूले
1: यार की गली। एंड एक ऐसी फिल्म जिसने अपने टाइम पर धमाल कर दिया था और जिसने देखा उसने ने कहा कि भैया ये तो हमारी लाइफ चल रही है। फिलहाल आपको बताना है कि ये किस फिल्म का डायलॉग है जो मैंने आज आपको आवाज में सुनाई है। दोस्तों की फिल्म है ये।
4: तू तो मेरा यार है, मैं तुझे मंजिल तक छोड़ूंगा।
5: मंजिल बस 2 गली दूर है, तू आराम से बैठो।
4: इतनी मेरी टली की भूल जाए असलम की गली।
6: खली बल्ली टली गली
4: टली गली इतने भी नहीं है टली, भूले यार की गली।
1: 5000 1896 पर दोस्तों की एक अनोखी फिल्म जिसने पूरे दौर में कमाल कर दिया था। आपको बताना ये किस फिल्म की बात कर रहा हूँ जिसके डायलॉग मैंने यहाँ सुनाया है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इस फिल्म ने उस टाइम पर धमाल कर दिया था, कमाल कर दिया था। 5000 1896 पर वॉइस नोट में आप भी कमाल कर दो, बता दो हमारे गौरव ये डायलॉग तो इस फिल्म का है। देखिए जरा कितने लोगों को ये फिल्म याद है। मिर्ची था।

0: 89.6 पर मेरे साथ इस घंटे कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसे कहते हैं
1: अब शुरू होता है बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट।
2: ओके सर।
0: और बॉलीवुड के सरप्राइज टेस्ट में आज यारों की दोस्तों की फिल्म की ये डायलॉग की बारी।
3: तू तो मेरा यार है, मैं तुझे मंजिल तक छोड़ूंगा।
4: मंजिल बस दो गली दूर है, तू आराम से बैठ।
3: इतनी पहले टली की भूल जाए असलम की गली।
5: खली बली टली गली
3: टली गली इतने भी नहीं है टली भूले यार की गली
0: यार की गली खली बली टली बली। इसमें ही हिंट भी छुपा है, पिक्चर में एक ऐसे ही गाना इसी नाम से था। 5000 1896 5000 1896 पर अपने जवाब भेजिए। फ्रेंडशिप डे के मौके पर आज ये पिक्चर बड़ी इम्पोर्टेंट है।
3: तो मेरा यार है, मैं तुझे मंजिल तक छोड़ूंगा।
4: मंजिल बस दो गली दूर है, तू आराम से बैठ।
3: इतनी पहले टली की भूल जाए असलम की गली।
5: खली बली टली गली
3: टली गली इतने भी नहीं है टली भूले यार की गली।
0: 5000 1896 पर यार की गली वाला ये डायलॉग किस फिल्म से है बताइए। जल्दी जल्दी अपने वॉइस नोट में जवाब भेजिए। मिर्ची सुनते रहिए। इट्स हॉट
6: मिर्ची।
7: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
8: हेलो
9: बहन जी।
8: हाँ जी।
9: ये एक सेकंड ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं। ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है। वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
8: आपके घर में कोई नहीं है?
9: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड बेटा। चुप।
8: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
9: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर। आएंगी मामा आएंगी, चीजी लाएंगी बेटा, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
8: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है?
9: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ इधर आओ, देखो मामा आ गई चीजी लाई। हाँ डायपर गीला है बहन जी उसका,
8: उतार लीजिए उसको।
9: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
8: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
9: अच्छा ये बेब है। एक सेकंड
8: डायपर, देखिए सुसु करा होगा उसने। देखिए
9: हाँ सुसु ही करा। चुप,
8: उतार दीजिए।
9: एक सेकंड उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही
8: है।
9: क्लैपिंग करो।
8: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
9: हाँ मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं। रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
8: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
9: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। Supply.
10: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
11: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1। It's hot.
12: The Mentalist Suhani Shah live

0: अरे कोई शहरी बाबू नहीं, सब अपने लोग, अपने लोग खरीद रहे हैं जम के खजूर फेस्टिवल से हजूर और खा रहे हैं सबके सब खजूर।
1: मस्त मौला गौरव।
0: अब तक का रिकॉर्ड 38,000 विजिटर्स जो है वो पहले 6 दिनों में लोकल डेट एग्जीबिशन में गए हैं। 11वां एडिशन है और हर साल के साथ ये बड़ा होता जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर हम कतरी लोकल ग्रोन प्रोडक्शन की बात करें तो भैया सारी की सारी वैरायटी इस बार अपने यहां से है एंड लगभग 76,500 केजीज फ्राइडे तक बिक चुका था। ये एग्जीबिशन की रिकॉर्ड सेल है, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं और ये सारी डेट वैरायटीज हमारे यहां लोकल है। वेल बड़ी बात यह है, ये बात मैं नहीं कह रहा, अहमद सालेम अल यफई साहब जो कि हेड ऑफ एग्रीकल्चर एडवाइजरी एंड सर्विसेज सेक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी में, उन्होंने ये बात बताई है। 125 लोकल फार्म्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छी बात यह है कि सीजनल फ्रूट भी मिल रहा है भैया। यहां आप जाएंगे आपको फिक्स मिल जाएगा, बनानास एकदम ताजे, पपाया, आलमंड्स सब कुछ मिल रहा है। अगस्त 10 तक ईस्टर्न स्क्वायर सुक वाकिफ में डेट्स के साथ साथ सीजनल फूड्स एंड फ्रूट्स ये सब मिल रहे हैं, जाइए खा के आइए। और खलास खुनेजी बरई शीशी ये कुछ वैरायटी है जो भयंकर तरीके से बिक रही है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, खरीद के आइए और मस्त मौला गौरव को तुरंत एक डब्बा भिजवाइए क्योंकि हम नहीं जा पा रहे ना। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: मेरी आंखों में, आंखों में तो तुम देखो, देख ही रहे आपकी आंखों में, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा।
1: मस्त मौला गौरव।
0: लेकिन कोई आ रहा है जो आंखों में देखेगा और आपके बारे में सब कुछ बता देगा। यस, मस्त मौला गौरव इज ऑल सेट, कतर इज ऑल सेट। मैं आपको बताना चाहूंगा, द मेंटलिस्ट सुहानी शाह इज ऑल सेट। 25 सितंबर की तारीख तय हो गई है जब वो हमारे कतर में आ रही है। यस, द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, प्रेजेंटेड बाय आईपे, जहां पर 25 सितंबर को ठीक शाम 5 बजे वो महफिल सज जाएगी QNCC में। याद रखिए, QNCC में 25th of September। और बड़ी बात यह है, इसमें हमारे साथ एसोसिएट पार्टनर्स है डेरी क्वीन, पापा जोन्स, रेस्टो पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, हमारे इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, हमारे मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया। इसके अलावा थैंक यू कहना चाहेंगे ब्रैड एड्स को, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड अब वो इंतजार कर रहे हैं हम और आप कि टिकट्स कहां मिलेगी। तो यस, बता दूं, टिकट्स विल बी अवेलेबल राइट नाउ एट SCT स्नूनू, जहां पर आप राइट नाउ अपनी टिकट ऑर्डर कर सकते हो, बुक कर सकते हो। अर्ली बर्ड ऑफर चल रहे हैं, प्लीज मौका मत छोड़ो, अर्ली बर्ड ऑफर्स में टिकट्स बुक कर लो। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह इज कमिंग टू for the very first time 25th of September, and धमाल होगा, कमाल होगा, दिमाग से आपके बवाल होगा। तैयार हो जाओ, 89.6 मिर्ची 1 कुनाफा बकलावा और जलेबी।

0: Ketchup.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं।
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah, live.

0: Blizzard at Dairy Queen and Papa John's. Enjoy double delight offer. Two small pizzas at 44, two medium pizzas at 66, two large pizzas at 99 Rial. Papa John's, better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
4: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
5: कैसे रुक सकता है?
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मस्त मौला गौरव आपके साथ आ गया है।
1: मस्त मौला गौरव।
0: सारे रिकॉर्ड टूट गए भैया। हम आपको बता दें, बीन स्पोर्ट्स पर देखा गया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 बहुत ही शानदार तरीके से। 48 टीम्स पहली बार इस टूर्नामेंट में खेल रही थी। सबसे ज्यादा गोल जो है वर्ल्ड कप में हुए 308 और 9 अफ्रीकन टीम्स ने नॉकआउट स्टेज तक जगह बनाई है, जिसमें बहुत सारे देश अरबिक नेशन थे और इसकी वजह से लगातार लोगों की दिलचस्पी बनी रही। सबसे ज्यादा जो मैचेस देखे गए वो इजिप्ट के लिए थे। यस, लोगों ने इजिप्ट और अर्जेंटीना का मैच जबरदस्त तरीके से देखा एंड सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उसी मैच को मिली। लेकिन पूरे वर्ल्ड कप के दौरान क्यूमुलेटिव व्यूअरशिप जो थी 6.2 बिलियन, 602 करोड़ लोगों ने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान ये देखा। 620 करोड़ लोगों ने, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ट्यून कर बीन स्पोर्ट्स को वर्ल्ड कप मैचेस का मजा लिया। और अब अगले 4 सालों का इंतजार जब ये फिर से लौटेगा। एंड इसी साथ मैं आपको बता दूं, अर्जेंटीना स्पेन मैच जो फिनाले था उसकी सबसे हाई व्यूअरशिप थी 245.4 मिलियन। अगर अरब वर्ल्ड की बात करें तो अर्जेंटीना इजिप्ट मैच एट 192.6 मिलियन व्यूअर्स इन द राउंड ऑफ 16। ये बताता है कि फुटबॉल का क्रेज दीवानगी इस देश पर सर चढ़कर बोलती है। एंड थैंक यू टू बीन स्पोर्ट्स जो सारा एक्शन लेकर आए थे एंड हर गोल के बाद अल्लाह अल्लाह गोल गोल एंड चिल्लाते रहते थे। जो कमेंटेटर होते थे, कमाल की कमेंट्री। मतलब मैंने तो बहुत सारे मैचेस बीन स्पोर्ट्स पे ही देखे और एक अलग ही कमेंट्री स्टाइल है, मजा आ जाता है। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: Amit Trivedi, studio है, guitar है, माहौल है. रुके किस लिए हैं आप?

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी। टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल।
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हाँ जी, गाना का ही हमारा फन गाना खत्म हुआ और आपके साथ आ गया फिलहाल घड़ी का टाइम धीरे धीरे 7:04 बजा रहा है।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: जब तक बातें की 7:05 हो गया, लेकिन मस्त फॉलो गौरव आपको 7 बजे की एक बड़ी बात बताता है कि हमारे कतर को सेफ स्पेस बनाने में हम सबकी भी अब एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मेथ्राश ऐप पर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंशियल फीचर हाईलाइट किया है, जिससे अब आप बिना किसी सर्विस सेंटर जाए कहीं जाए डायरेक्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी को सिक्योरिटी रिपोर्ट भेज सकते हो। हाँ जी, आप ये समझ लो कि आपके पास कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको शेयर करना है, लेकिन आपको डर लग रहा है कहीं जाएंगे कोई देख लेगा, आप उसको मेथ्राश के थ्रू कर सकते हो। मेथ्राश के सिक्योरिटी आइकॉन पर क्लिक करो एंड सिक्योरिटी कंप्लेंट में जाकर नेविगेट करते हुए आपको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है और वहां पर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन चूज कर डिटेल्स सबमिट कर देनी है। और क्या क्या रिपोर्ट कर सकते हो, कोई सस्पिशियस व्हीकल आपको दिख रहा है ऐसा जो कि संदिग्ध गाड़ी है और आपको समझ में आ रहा है यार मुझे सही नहीं लग रहा है, उसकी रिपोर्ट। कोई एक्टिविटी ऐसी लग रही है किसी पर्सन की जो कि सस्पिशियस है, आपको लग रहा है यार ये डाउटफुल बंदा है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। एंड ऐसा कोई भी एस्टेब्लिशमेंट या रेसिडेंस जहां पर आपको कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिख रही है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। और सबसे खास बात, आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। एक छोटा सा स्टेप आप कतर के लिए करेंगे, इससे हम और आप ज्यादा सिक्योर बनेंगे, हमारा कतर और पीसफुल होगा एंड किसी तरह की कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं आएगी। याद रखिए, आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल सेफ रखी जाएगी, बस आपको जाकर मेथ्राश पर इस तरह की कोई भी सिक्योरिटी लैफ जहां आपको दिख रही है वो अलर्ट रिपोर्ट वहीं सबमिट करनी है। उम्मीद में कि हम और आप ऐसे लोगों को जरूर रिपोर्ट करें, लेकिन इस पर शरारत करने की जरूरत नहीं कि मतलब जबरदस्ती किसी को रिपोर्ट करें, वरना आप ही फंसेंगे। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. La virba la murga.
1: Mirchi, murga. हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय।
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार?
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
2: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3
1: करता हूँ।
2: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी।
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
1: नहीं,
2: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने, हिट गाने।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: पता नहीं। अरे कोई बात नहीं, आपको खबर नहीं है तो हम आप तक पहुंचा ही देते हैं।
1: मस्त मौला गौरव।
0: और अगली खबर उनके लिए जो म्यूजियम्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। यस, तो हम आपको बता दें कि कतर म्यूजियम्स अगस्त के मंथ में भी लेकर आया ढेर सारी एक्टिविटीज उनके डिफरेंट म्यूजियम्स में। अगर हम समर स्पोर्ट्स फन फैक्ट्री की बात करें तो ये चलेगा 1st ऑफ अगस्त से 29th ऑफ अगस्त के बीच 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में। एंड यहां पर आप अगस्त 1st से 29th सेलिब्रेट कर सकते हैं। वेल, म्यूजियम मेमोरी गेम ये नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में 10th ऑफ अगस्त एंड 17th ऑफ अगस्त को खेला जाएगा। ये बच्चों के लिए एक जबरदस्त एक्टिविटी होने वाली है। इंटरनेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट हो रहा है 12th ऑफ अगस्त को, यस, एट कतर म्यूजियम्स। इसके बाद अगर बात करें तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे अगस्त 19th। एंड फोटो खिंचाने का शौक आजकल दुनिया में हर इंसान को है। एंड इससे रिलेटेड एक फायर स्टेशन सिनेमा पर होने वाला है इवेंट अगस्त 19th को। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं तस्वीर नाम से। इसके अलावा फैमिली वीकेंड ऑलरेडी चल रहा है 20th से 22nd ऑफ अगस्त कतर म्यूजियम्स में, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए ये फैमिली वीकेंड होगा 20th ऑफ अगस्त से लेकर 22nd ऑफ अगस्त तक। ये आप शामिल होने के लिए आपको इनवाइट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कतर म्यूजियम्स 18th एंड 19th ऑफ अगस्त को वाटर कलर पेंटिंग लेकर आ रहा है। बच्चों के लिए एक जबरदस्त क्रिएटिव आइडिया एंड ढेर सारे इवेंट्स की रेंज जो बताती है कि कोई बच्चा अगर घर नहीं भी जा पाया तो कोई बात नहीं, उसके लिए मौके ही मौके एंजॉय करने के। एंड मजलिस फिल्म क्लब ये MIA लाइब्रेरी में, यस, आपको मिलेगी अगस्त 30th को। इसके लिए हम आपसे कहेंगे, आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं कतर म्यूजियम्स की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ये सारे इवेंट्स वहां भी लाइंड अप है। एंड ये बस बताना चाहता हूं कि कतर के कोने कोने में सेलिब्रेशन हर दिन चलता है, बस आपको पता होना चाहिए। और पता लगाने के लिए क्या करना है, ट्यून करते रहना है मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
1: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू iPhone 17 Pro Max। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

गाना पहला इश्क, और मैं कहता हूँ हमारी जिंदगी में जब हमें पहला इश्क होता है तो उसमें दोस्तों यारों का बड़ा मेजर रोल होता है। लेकिन मेरी जिंदगी में मेरे दोस्तों यारों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब मैंने उन सबको हिंदी की पढ़ाई कराई थी क्लास टेंथ में। जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो सारे दोस्त 80 मार्क्स से अबव थे और उनको पढ़ाने वाला यानी कि गुरुदेव मैं 78 पे अटक गया। फिर क्या था, मैंने उन सबसे कह दिया कोई घर नहीं आएगा और अपना रिजल्ट लेके तो बिल्कुल मत आना। लेकिन दोस्त दोस्त ठहरे, कहां मेरी बात सुनने वाले थे। रिजल्ट तो लाए लाए, मीठे का डब्बा लेकर आके आंटी गौरव ने हमें पढ़ाया, देखिए हमारे 80, 84, 86 आए। गौरव का थोड़ा सा आंटी कम हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान जो है सबको पढ़ा देता है, खुद रह जाता है। फिर क्या था, वो तो मिठाई देकर चले गए, लेकिन उसके बाद मम्मी ने जो मुंह पे मेरे मिठाई लगाई, हाय हाय, उसके लाल निशान बहुत दिनों तक रहे। 89.6 मिर्ची वन पर ऐसे दोस्तों को दिल से थैंक यू, जिन्होंने जिंदगी में कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी बैंड बजवाने की। मिर्ची इट्स हॉट। ओ चलती कुड़ी, ओ चलती कुड़ी।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आलिया आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मम, व्हाट वाज द फीलिंग?
3: यू नो आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती. तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी. अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहे. तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं. मैं जब वो पहली बार सेट पे आई पर तब
2: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं. चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: इट्स ऑल डाउन टू धोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
9: In association with Dairy Queen, beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen and Papa John's. Enjoy Double Delight offer. Two small pizzas at 44, two medium pizzas at 66, two large pizzas at 99 Rial. Papa John's, better ingredients, better pizza.
10: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
11: Visual media partner, Rehab Media.
12: Production partner, Symphony.
13: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
14: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
15: बार बार.
16: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
17: 89.6
18: FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.

यार वैसे तो बाकी सारे रिश्ते ऊपर वाला ही बनाता है, लेकिन एक रिश्ता जो हमें वो चुनने का मौका देता है वो होता है दोस्तों का। लाइफ में आप न जाने कितने सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन जिससे आपका दिल दिमाग धड़कन सब मिलती है वो हो जाता है आपका दोस्त। एंड ट्रस्ट मी, हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी ऐसे टाइम पर थे जहां पर दोस्तों की जरूरत थी और दोस्त सामने खड़े हुए, लेकिन हमारे दोस्त आज शायद हमसे बहुत दूर हैं, हमसे इतनी दूर है कि शायद हम मुश्किल से महीनों में एक बार बात कर पाते हैं, लेकिन हमें व्हाट्सएप के जरिए ही सही एटलीस्ट एक ग्रुप में शामिल किए हुए हैं जहां पर हम सब एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान है वो अपनी जगह, लेकिन थैंक यू टू व्हाट्सएप, थैंक यू टू फेसबुक, थैंक यू टू इंस्टाग्राम, जिस पर हम अपने सारे दोस्तों से फिर से जुड़ पाए। एंड ऑर्कुट को भी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम मिलेनियल्स जब हम अपने स्कूल से बाहर निकले तो हम अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए ऑर्कुट के अलग अलग अंदाज में जाकर उनकी ढूंढाई, उनकी शुरुआत में खोज करते थे। बाद में फेसबुक आ गया तो चीजें और आसान हो गई। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको आपकी लाइफ में कुछ मिले ना मिले, अच्छे दोस्त मिले, क्योंकि दोस्त अगर अच्छा तो जीवन बन जाता है दोस्त। इसी उम्मीद में कि आप भी जिंदगी में आज जो कर पा रहे हो उसमें दोस्तों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मस्त मौला गौरव अपने दोस्तों को दिल से थैंक यू बोलेगा। नाम लेने बैठूंगा तो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन 20-25 नाम उसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि मुझे जिंदगी के हर पड़ाव पर दोस्तों की जरूरत पड़ी और जहां जहां दोस्त बने उनसे जीवन भर का एक मेल हो गया। 89.6 मिर्ची वन, दोस्त अनमोल, जीवन भर का मोल उनके साथ ही रहता है। इस उम्मीद में कि आप अपने दोस्तों से आज बातें कर रहे होंगे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोल रहे होंगे, मस्त मौला गौरव लेगा अलविदा। आप भी हमारे दोस्त हैं, आपकी वजह से तो पेट पल्ला है। मिर्ची इट्स ऑल, टाटा बाय बाय।

أشهد أن لا

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: जब भी मैं मॉल में शॉपिंग करने जाता हूँ, एक चीज लेनी होती है, पांच लेके आ जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ये तो गलत है, अगली बार से एक ही लाना, क्योंकि पांच लेकर पकड़े जाओगे तो मॉल वाले चोर समझकर मारेंगे।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
3: Ghana Indie Top 10.
4: Kanika ke saath on Mirchi.
5: Mirchi sun rahe hain aap. Ab baari hai hafte ke hottest pop countdown ki. हेलो एंड वेलकम. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं. हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक. सम स्पेशल शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे गिरा ये गाना, फीचरिंग ज़ारा खान एंड स्केल्स. गाने का नाम है मूव बॉडी. दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. काउंटडाउन की शुरुआत with Move Body on Gaana number 10. At RJ Kanika on Instagram par koi gaana share karna, koi baatein batani ho, bindaas hit me up. Stay tuned for the full countdown. This is Move Body playing right next for you only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
6: Number 10.

0: बहुत कुछ हुआ, क्या हुआ पता नहीं. ज़ारा खान का गाना दैट वाज मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. ये गाना जब इस काउंटडाउन से बाहर भी हो जाएगा तो शायद याद नहीं रहेगा, बिकॉज इट डिड नॉट मेक मी फील एनीथिंग एंड फीलिंग इज एवरीथिंग.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: आई सेड व्हाट आई सेड. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. दिस शो इज अबाउट द सॉन्ग्स व्हिच मेक यू फील समथिंग. पॉप सॉन्ग्स जो आर्टिस्ट अपनी आजादी से अपनी कहानी सुनाने के लिए लिखते हैं. किसी बड़ी फिल्म निर्देशक एक्टर एक्ट्रेस के लिए गाने नहीं बनते हैं, पर हर तरह के गाने होते हैं. कुछ मासी एंड कुछ ऐसे गाने जो शायद इतने बड़े स्केल पे नहीं फटते, लेकिन जितने लोग उन्हें सुनते हैं वो कुछ फील करने पे मजबूर हो जाते हैं. ऐसे ही एक गाने को आज हम शाउट आउट देने वाले हैं. गाने का नाम है तारे बाय फरक. इससे पहले कि मैं वो गाना चलाऊं, आई वॉन्ट यू टू थिंक समथिंग. सोचो एक परिंदा पिंजरे में इतने दिन रह रहा है कि जब दरवाजा खुला तो उड़ना ही भूल गया. जिंदगी भर जिस आसमान को देखता रहा, अब जब वो आसमान उसके सामने है, उसे डर लगने लगा कि अभी आगे कैसे जाना है, पहला कदम कैसे लेना है. एंड एक्चुअली ये परिंदे की बात ही नहीं है, ये हम सब हैं. हम सब के अंदर कहीं ना कहीं, टू बी ऑनेस्ट, एक चुल होती है ना, एक छोटा सा कीड़ा छुपा बैठा है. कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं. कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर कोई कलाकार, फिल्म, पेंटिंग, कोई आइडिया जिसका बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं. पर हमने क्या किया, उसको लेके सारी विशेस को एक अलमारी के अंदर डाल दिया कि चलो पहले जिंदगी बना लेते हैं फिर सोचेंगे. अब वो अलमारी बंद ही रह गई और वो सपना अंदर ही रह गया. लेकिन मान लो एक दिन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वो जो सारी विशेस हैं वो पूरी हो गई, अलमारी खुल गई, सपना बाहर आ गया, जो परमिशन चाहिए थी वो मिल गई, जो पैसा चाहिए था, वक्त चाहिए था, वो आपके सामने है, आसमान दिख रहा है खुला सामने. तो फिर सोचने वाली बात है कि क्या मैं और आप एकदम उड़ जाएंगे या उस दरवाजे को देखते ही रहेंगे और डर जाएंगे उस परिंदे की तरह, जो अब इतना यूज्ड टू हो गया अपनी सिचुएशन से, अपने सर्कमस्टेंसेस से, कि आज़ादी कैसी लगती है वो भूल ही चुका है. इसका कोई सही जवाब नहीं है और आपको मुझे तो बिल्कुल नहीं बताना है, पर सोचने वाली बात है. और यही सोचते सोचते अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. ये गाना बिल्कुल आपको उसी कश्मकश में लाके खड़ा करेगा. पहचान छोड़ दी जीरो से दोबारा शुरू करने वालों के लिए. आर्टिस्ट का नाम है फरक, गाने का नाम है तारे. It's playing right next for you on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

यार ये गाना ऐसी फील्स को हिट करता है जो जेन्युइनली मैंने छुपा दी थी अपने अंदर। गाने का नाम है तारे बाय फरक, साथ में उनकी आवाज है शाश्वत बलान की। अभी सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है, अपने अंदर के उस छुपे हुए आर्टिस्ट को निकालो। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ दैट जो भी आप जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वट एवर यू डू, अगर आपको आपकी विश पूरी करने का एक चांस मिल जाए तो क्या करोगे, क्या है वो अंदर की चिल। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। हर्ष नसी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है साडी सुन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव, पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके साडी सुन इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 9। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री, गाने का नाम आरजू बाय नूर खान एंड मधुर एक्सो। आरजू ने डेब्यू किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। Number 9. How chup kar la

0: की टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिस्टर गौतम,
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर कुछ गाके सुनाइए।
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद करने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ।
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
3: कौन से गाने
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
3: सुन ले बात,
4: मेरी बात
3: सुन, पहले बात सुन।
4: हाँ सर,
3: और ऐसा बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
4: है। सर बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर।
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: अमित के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: इट्स हॉट
2: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट फोर बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन।
3: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
4: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
5: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
0: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
3: The mentalist Suhani Shah live.

0: एश किंग की आवाज में, गाने का नाम है किनिया सोनी, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले संजू राठौड़ की आवाज में हमने सुना बैंगल्स, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर अ गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक, एंड आज मैं जिस आर्टिस्ट से आपको मिलवाना चाहती हूँ, ट्रस्ट मी, इनके गाने को सुनने के बाद आप ये सवाल पूछोगे कि यार कनिका इससे पहले क्यों नहीं रिकमेंड किया। आर्टिस्ट का नाम है खोसला रघु। इस नाम में दो आर्टिस्ट हैं, ऋषभ रघुवंशी एंड संचित खोसला। टुगेदर दे मेक खोसला रघु। इनकी स्टोरी इज स्टफ ऑफ ड्रीम्स। ये दो दोस्त हैं, बोर्डिंग स्कूल में साथ में पढ़ते थे, एंड आपने भी अपने दोस्त से कभी तो कहा होगा कि यार साथ में कुछ शुरू करते हैं, साथ में म्यूजिक करते हैं, साथ में ये करते हैं, और कहीं ना कहीं वो रह जाता है कुछ लोगों का। पर संचित एंड ऋषभ एज आर्टिस्ट, हम सबका वो सपना जी रहे हैं, एंड दे आर सो गुड एट व्हाट दे डू। कोई बहुत बड़ी बैकिंग के साथ उन्होंने शुरू नहीं किया, काफी ऑनेस्ट सॉन्ग राइटिंग एंड देयर अबिलिटी टू कनेक्ट विद देयर ऑडियंस। गानों में आपको फुल कंटेम्प्रेरी पॉप, क्लासिकल, हैवी वोकल्स, एवरीथिंग दैट मेक्स अस फील है कि कौन से वाला गाना है, वो सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। इट साउंड्स वेरी न्यू एंड मॉडर्न, येट रूटेड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल। I remember many conversations with both of them, and वो कभी भी trends के पीछे भागते ही नहीं है। They just make the songs जो उन्हें पसंद हैं, and उनके कई सारे गाने Instagram पर already trend कर चुके हैं। So yes, they are trendsetters। जो गाना आज हम spotlight करने वाले हैं, उस गाने का नाम है बेवजह। ये उस पहले वाले प्यार की बात है जो धीरे से ना आपकी पूरी दुनिया पे टेक ओवर कर लेता है। उनकी राइटिंग, म्यूजिक बहुत ऑनेस्ट है। अगर आप इंस्टाग्राम पे इन दोनों को देखेंगे तो जिस तरह से वो म्यूजिक बनाने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, वो भी बहुत ऑनेस्ट है। आई स्वेयर मैंने कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं देखे जो अपने फैंस के साथ ये तक शेयर करते हैं कि इस गाने को बनाने के पैसे कितने लगे, इसका हमने कितना कमाया, अगर आप ये शुरू करोगे तो ये गलती मत करना। That's how you build loyal listeners. And Khosla Raghu, Gaana Indi Top 10 ki taraf se super mad respect to you guys. Apne radio sets ki volume badha lijiye. Gaane ka naam hai Bewajah. Khosla Raghu ki nayi album ka pehla gaana. It's playing right next for you only on Gaana Indi Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: रोजा रघु का नया नवेला गाना, गाने का नाम है बेवजह, फीलिंग्स हैं बिल्कुल की दिल है जो मानता नहीं। एट आरजे करेगा ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, कोई गाना आर्टिस्ट जिन्हें आप स्पॉटलाइट देना चाहते हो मेरे साथ आके शेयर करो। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। अगले वाला गाना इज अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी। 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 5।

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है?
1: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
2: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज, गाने का नाम है डीलर। 19 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होकर डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka report card hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jaye. Mera handle is @RJKanika. It's time for what we call
1: Kanika's Cassette Classic.
0: हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

And the song we're going to feature this week is... गाने का नाम है तेरे मेरे साथ और आर्टिस्ट का नाम बता देती हूँ पर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती बिकॉज लकी अली की आवाज ऐसी है कि पहले सेकंड में हम पहचान जाते हैं कि ओ ऑफ कोर्स दिस इज लकी अली। अब मेरा काम तो गाने के बारे में बात करना, गाने सुनाने का है, लेकिन कभी कभी जब सड़कों पे निकलती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, उनसे उनके रिएक्शंस जानने की कोशिश करती हूँ अबाउट दीज लेजेंडरी आर्टिस्ट, तब समझ में आता है दैट लकी अली जैसे आर्टिस्ट ने पॉप म्यूजिक के लिए कितना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है। उन्होंने इतने बड़े हिंदी फिल्मों के लिए गाने किए हैं जैसे एक पल का जीना, अनजाना अनजानी में उनका गाना था, पर जितने लोगों से बात करो उनका नाम सुनते ही सब उन्हें एक पॉप स्टार बोलते हैं। उनके अपने पॉप सॉन्ग्स, वो खुली सड़क, वो गिटार, वो लाल गाड़ी, धूप में लकी अली गाने गा रहे हैं। और ये किसी फिल्म के गाने नहीं है, ये उनकी अपनी एल्बम के गाने हैं। दैट्स जस्ट द मैजिक दैट दिस मैन हैज। आप कभी इनका लाइव परफॉर्मेंस अटेंड करें, क्राउड कमाल की होती है। आपको 70 साल के लोग भी मिलेंगे और 20 साल के लोग भी। इंटरनेट पर जो उनकी क्लिप्स हैं, उनके गानों के वीडियोस हैं, उनके कमेंट्स के नीचे हर उम्र के लोग मिलेंगे और एक ही जैसी बातें करेंगे। वन ऑफ दोज रेयर आर्टिस्ट जो सारी जनरेशंस के फासले मिटा रहे हैं। और जो ये वाला गाना है तेरे मेरे साथ, अक्स एल्बम का गाना है, इसका वीडियो क्यूबा में शूट हुआ था। धूप, खुली सड़क, एकदम फ्री फीलिंग। गाना सुन के आप बहुत हल्का हल्का फील करोगे और सनी फील करोगे। इट्स वेरी सनशाइन वाला सॉन्ग, टॉक्स अबाउट कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, कि जब सारा जग सोता है। ये गाना उस अजीब से खास से कनेक्शन की बात करता है जो वर्ड्स में बोलना मुश्किल है, तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लो। लगी अली की आवाज में दिस इज तेरे मेरे साथ प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन कैसेट क्लासिक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

0: अगर सनशाइन इमोजी एक गाना होता ना तो लकी अली का दिस सॉन्ग वुड बी इट बिकॉज वाओ हाउ डू यू डू दिस लकी अली की आवाज में. दिस वाज तेरे मेरे साथ ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर जल्दी आओ. 90s 2000s का वो जो भी गाना है जिसको सुन के आज भी आप बड़े खुश हो जाते हो ना कि यार इस गाने में ही बात थी, वही वाला गाना जानना है मुझे एट आरजे कनिका पर आके हमारे साथ शेयर करो. मैं और अश्का हम दोनों आपकी सारी सजेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ बढ़ते हैं. आदित्य रिखारी रावत और कुटले खां का गाना, गाने का नाम ए अजनबी. 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ए अजनबी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: Indie Top 10. Kanika Kasat on Mirchi. It's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं।
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
0: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah.

0: in association with Dairy Queen. Beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen. And Papa John's. Enjoy Double Delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 Rial. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: इंडी टॉप 10
4: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
5: मिर्ची सुन रहे हैं आप. बंदी का नाम है आरजे कनिका. शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10. ये वो शो है जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री थी. हमने अपने 90s 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने को शाउट आउट दिया. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर पूरा कर चुके हैं. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप. ज़ारा खान का गाना मूव बॉडी दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद हर्ष नुसी का साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. नूर खान एंड मधुर एक्सो के आरजू ने इस हफ्ते डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 8. देन संजू राठौड़ का बैंगल्स ऑन गाना नंबर 7. एश किंग का किनिया सोनी 4 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी 8 हफ्तों से स्ट्रॉन्ग ऑन द काउंटडाउन दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. दिलजीत दोसांझ का डीलर इज द मोस्ट सीनियर सिटीजन सॉन्ग ऑफ द काउंटडाउन 19 हफ्तों से बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. 15 हफ्तों से डटा हुआ ये गाना आदित्य रिखारी रेवटों कुटले खा का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग कॉल्ड ए अजनबी दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, कोई रीशफल नहीं हुआ है. ये दोनों गाने इन पोजीशंस पर डटे हुए हैं 18 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रॉय की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा. 18 हफ्तों से ये गाना भी डटा हुआ है शीशा दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
3: नंबर 2.

0: Indie Top 10 Kanika Kasat on Mirchi. It's hot.
1: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
2: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
3: 89.6
4: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu on your Mirchi.
1: Purani zamane ki one of the most beautiful and most talented actress Mumtaz. Mirchi sun rahe hain aap Purani Jeans par, main hu Charu aapke sath. Aur suniye ek podcast mein unhone apni family ke bare mein kya share kiya tha.
2: Very orthodox family, that is one of the reason my parents separated. Because when my father came from Iran, my mother became too modern and my father was very simple person. He had money. वो हिस्टोरिया होटल उनकी थी और ड्राई फ्रूट की बिजनेस थी उनकी. तो ही वाज वेल ऑफ बट ही वाज वेरी ऑर्थोडॉक्स. उनको नहीं पसंद था कि उनकी बीवी मॉडर्न हो. वो ना इत्तफाकी हो गई, दे वर नॉट गेटिंग ऑन एंड माय मदर वाज एंजॉयिंग टू ड्राइव कार एंड जीन्स पहनने लगे. वो तो गेट ऑन नहीं हुए. सो माय फादर सेड नो आई कांट टेक दिस, लेट्स हैव अ डिवोर्स. तो डिवोर्स में तो माय मदर सेड कि नहीं, मनी नहीं चाहिए, उसके अवज में मुझे मेरी बेटियां दे. तो वैसे भी मेरे फादर को लड़के चाहिए थे. वो समझते थे लड़के होंगे तो अच्छा है, लड़कियां शादी करके चली जाए, ऑर्थोडॉक्स. तो मेरी मम्मी ने कहा कि दो लड़कियां हैं, आप दूसरी शादी करेंगे तो शायद आपको लड़का हो जाएगा, तो लड़के मैं ले लेती हूँ. तो माय फादर सेड ओके. तो माय मदर ब्रॉट मी अप, माय ग्रैंडमदर ब्रॉट मी अप, माय आंट ब्रॉट मी अप.
1: और इसीलिए मुमताज शायद बन गई एकदम बेबाक और बिंदास. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. आप सुन रहे हैं मिर्ची.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu on your Mirchi.
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिरोज खान एंड मुमताज जी एक टाइम पे जब ये साथ में काम किया करते थे, इनके अफेयर के रूमर्स भी उड़ा करते थे। इस बारे में सुनिए एक रीसेंट पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
2: देखिए, फिरोज खान को तो पूरी दुनिया की औरतें प्यार करती थी, बट वी वर अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड। मैं तो उनको जेबीएच वाडिया के जमाने से जानती हूँ, जब उनकी खुद की एक इंग्लैंडियन गर्लफ्रेंड थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। और फिरोज खान और शमी कपूर के अलावा मुझे आज तक फिल्म लाइन में कोई खूबसूरत हीरो लगा नहीं। इवन टुडे आई थिंक ये दो ही पर्सनालिटी थी जो बहुत हैंडसम थी हमारी फिल्म लाइन। काफी लोग थे जो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन एक फिजिकल अट्रैक्शन जो होती है ना, मुझे इन दोनों से लगती थी व्हेन आई वाज वर्किंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी आपको अट्रैक्टिव लगे उसके साथ अफेयर हो। मेरा फिरोज के साथ अफेयर कभी भी नहीं था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट आई वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिम एंड आई वाज फिजिकली अट्रैक्टेड टू हिम। अफेयर वफेयर कुछ नहीं हुआ मेरा उनके साथ।
1: चलो, क्लैरिटी मिल गई, अच्छी बात है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah live in

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Chari on your Mirchi.
1: लोग ऐसा कहते थे कि राजेश खन्ना मुमताज जी के बीच में भी रिलेशनशिप था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये कैसा रिलेशनशिप था, सुनिए पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
2: लोगों का क्या है, मैं आपसे एक बात बताऊं, जो भी हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री होती है ना, जब वो 8-10 फिल्में एक साथ करते हैं, सो दे नो ईच अदर सो वेल, दे बिकम ऑटोमेटिकली वेरी क्लोज, वो एक शाइनेस निकल जाती है, देखने से ऐसा महसूस होता है कि इनका कुछ चक्कर है, तो वो इंसान क्लोज हो जाता है, वो केमिस्ट्री जो हो जाती है, जिसकी वजह से जब एक दूसरे से बात करते हैं, हाथ गले में डालते हैं, कमर में डालते हैं, जैसे धक्का मारना हो, तो वो डरते नहीं है एक दूसरे से, नो फॉर्मेलिटीज, सो दे बिकम लाइक अ फ्रेंड। तो वो था मेरा पार्टनर के साथ, मैंने कितनी 10-15 पिक्चर लिखी और एक भी फ्लॉप नहीं हुई, हमारे सितारे मिलते होंगे साथ, अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं है, अफेयर नहीं था मेरा, एंड वी वर नेबर्स, मेरा घर और उनका घर आजू बाजू में ही था, और अंजू तो पहले से उनके साथ थी, नो ही वॉज नेवर इन लव विद मी, ही वॉज विद अंजू व्हेन आई वाज वर्किंग विद।
1: सही बात है भाई, केमिस्ट्री सिर्फ रिलेशनशिप से थोड़ी ना होती है, अच्छी गहरी सच्ची दोस्ती से भी तो होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: कुणाल खेमू एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है। एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
4: मुझे एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम, आई डोंट रिमेंबर माय ड्रीम्स, मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक विच इज अ गुड थिंग क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते, तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की।
3: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते, हर दिन की नई शुरुआत। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold art.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: Our business is our business. None of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
7: Qatar का number one radio station.
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1. It's hot.
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू उंगलियों मिर्ची।
1: क्या ये बात सच है?
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये बात कि शशि कपूर साहब ने एक बार मुमताज जी के साथ काम करने से मना कर दिया था, सुनिए एक पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
3: यस, सच्चा झूठा में Everybody refused with me. Dara Singh ki heroine thi. Ab to mujhe nahi kaam karna. That time he took 2 lakhs to give him for signing him on. His Shashi ji said no. Change Mumtaz. He said sorry. He walked out. Why only Shashi Kapoor bichara? Whole industry refused.
2: तो क्या ये एक्टर्स जिन्होंने मुमताज जी के साथ काम करने से मना किया, इन्होंने कभी आके उनको ऐसा बोला कि सॉरी या उस टाइम ऐसा हो गया था?
3: नहीं, ईगो होता है ना, मर्द लोगों का ईगो बहुत होता है। They are never wrong. They are always right. And that doesn't really matter. As far as they worked with me, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने काम तो किया। अब वो खोदते बैठो तो सुरंग का एंड ही नहीं होता, चलता है। Goes on and on in life.
2: क्या बात है? इस बात से तो यही समझ में आता है कि सोच भी बड़ी रखनी चाहिए और दिल भी बड़ा रखना चाहिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बोलिए।
1: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
2: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ।
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu Unya Mirchi.
1: Late 60s ki one of the most talked about love stories, Shammi Kapoor ji and Mumtaz ji. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और सुनिए एक पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था कि कब उन्होंने शम्मी कपूर जी को पहली बार देखा था।
2: जब मैं दिल देखी देखो की शूटिंग पे गई थी मेरी बहन के साथ शूटिंग देखने के लिए, जब मैं 10 स्कूल से छुट्टी 10 11 की होंगी, मेरी बहन खुद 13-14 की थी, बहुत छोटी थी, तो मैं जाके जब सेट पर बैठी तो मैंने उनका गाना चल रहा था तो मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छे लगे शम्मी जी। तो मैंने कहा मलका मेरे को इससे शादी करना है। तो मेरी बहन बोली पागल, उसकी शादी हो चुकी है, उनकी वाइफ का नाम है गीता बाली। मैंने बोली हो गई शादी? बोले हाँ हो गई, मगर मुझे इसी टाइप के आदमी से शादी करना है। बोले ठीक है इंशाल्लाह, अगर तेरे नसीब में होगा हो जाएगा। तो मैं 10 साल की उम्र से उनको पसंद की थी, ऐसा नहीं कि अभी की थी।
1: ये कहानी आगे कैसे बढ़ी, क्या हुआ, सुनते हैं थोड़ी देर के बाद। राइट हियर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
3: यूं ही तुम

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
2: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM Mirchi 1 It's hot
0: Purani Jeans With Charu Only on

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू मिर्ची।
1: मुमताज जी ने शम्मी कपूर जी को पहली बार दिल देके देखो फिल्म के सेट्स पर देखा था और पहली नजर में प्यार हो गया था।

0: को मौका मिला शम्मी जी के साथ ब्रह्मचारी फिल्म में काम करने का। सुनिए एक पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
1: जब मैं बड़ी हुई फिर मुझे ये पिक्चर मिली, उस वक्त गीता जी गुजर गए थे, गीता बाली जी गुजर गए, तो he liked me, I liked him. We were there with each other for 2-3 years, I would say at least 3 years. 3 साल के बाद उन्होंने मुझे कहा कि I love you and I want to marry you. तो मैंने कहा okay, I'm ready to marry you. Then उन्होंने कहा कि काम तुम नहीं कर सकती, और मैं इतनी ambitious थी, और वो शमी जी 17 साल कुछ बड़े थे मुझसे, और मेरी मम्मी बोलती थी बहुत बड़ी एज है और बहुत लड़कियां इधर उधर पीछे हैं, तुझे खुश नहीं रखेंगे वो। तो मैं शमी जी को बोलती थी लीव हर, आई एम गोइंग टू मैरी यू, मगर काम करूंगी। तो शमी जी ने बोला काम नहीं कर सकती, बोले हमारे कपूर फैमिली के अंदर बहू नहीं करती है फिल्मों में, और उस जमाने में नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा यू कांट, तो मैंने कहा देन शमी जी ओन वर्क, बिकॉज आई लव माई जॉब, आई लव माई वर्क एंड आई वॉन्ट टू बी समथिंग इन माई लाइफ।
0: वेल, फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरीज में से एक है मुमताज जी और शमी जी की लव स्टोरी, और मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स में से एक है इन दोनों पे पिक्चराइज्ड ये गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
6: Dosti kai kusule madam. No sorry, no thank you.
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
8: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
9: खूब मिलेगा, मिलेगा.
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू ऑन योर मिर्ची।
1: मुमताज जी और शमी कपूर जी कुछ 3 साल तक एक रिलेशनशिप में थे। उसके बाद शमी जी ने मुमताज जी को प्रपोज भी किया, मुमताज जी ने हाँ भी की, लेकिन जब ये कंडीशन आई कपूर खानदान की तरफ से कि शादी के बाद वो काम नहीं कर सकती, तब मुमताज जी ने मना कर दिया, क्योंकि तब उनके करियर की शुरुआत ही हुई थी और वो काफी कुछ अचीव करना चाहती थी। लेकिन जो भी वजह रही हो, रिश्ता टूटता है तो दिल भी टूटता है। एक पॉडकास्ट में सुनिए उस टाइम के बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था कि किसने उनको संभाला, हिम्मत दी।
2: माय मदर डाइड वेरी यंग व्हेन आई वाज डूइंग विशांतरम्स पिक्चर। शी डाइड देन डिलीवरिंग माय वन ऑफ माय ब्रदर। आई वाज ब्रॉट अप बाय माय आंट। माय रियल मदर वाज माय आंट। तो आंटी मुझे बहुत प्यार करते थे, माँ से ज्यादा प्यार करते थे, और वो हमेशा मुझे देखते ही बोलते थे, क्या हुआ, तो खुश है ना? मैं यहाँ ना खुश हूँ, तू लग रही नहीं है। एंड मेरी सिस्टर थी, मेरी बहन वॉज ऑलवेज लाइक अ रॉक, माय आंट वॉज लाइक अ रॉक। एंड देन आई हैड नो टाइम टू थिंक अबाउट वन थिंग। आई वॉज सो बिजी, 7 to 2, 2 to 10, 7 to 2, 2 to 10, till I got married. तो अभी बैठ के किसे गाने याद करूं, डायलॉग याद करूं, कि क्या अभी क्या करूं? So I was okay. कितना भी इंसान प्यार करे, वो जख्म भर तो जाते ही है ना।
1: वो एक शेर था कि वक्त हर जख्म को भर देता है, कुछ भी कीजिए याद रह जाती है हल्की सी चुभन की हद तक। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: कैन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: सोमवार है,
1: है, है।
0: आज सोमवार है,
1: है।
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
3: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
4: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी आपको क्या लगता है?
6: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है. I think he is one of those people.
5: Tripti Dimri spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
3: Bollywood bol dal. Bollywood Bollywood Bollywood bol dal.
4: Only on Mirchi. It's hot.
7: 89.6. 89.6.
2: It's hot. Purani. Purani jeans with Charu only.

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: मुमताज जी ने अपने करियर में दो बहुत बड़ी फिल्में रिजेक्ट की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वेल, एक रिजेक्ट की थी पैसे की वजह से और दूसरी रिजेक्ट की थी प्यार की वजह से, एक्चुअली जो प्यार पूरा ना हो पाया उसकी वजह से। ये फिल्में थी सीता और गीता और अंदाज। सुनिए एक पॉडकास्ट में उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था।
2: देखिए, अभी 6.5 लाख में लेती थी उस जमाने में, अब 2 लाख में मैं कैसे करूँ। रमेश जी ने मुझे बोला 2 लाख, 1 लाख गीता का, 1 लाख सीता का। तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट थिंक आई विल वर्क इन 2 लाख। गीता और सीता तो मैंने प्राइस के लिए रिफ्यूज की थी, और वो दूसरी पिक्चर जिसमें हेमा जी थी, वो गाना है ना दिल जिसे दो, अंदाज, बिकॉज शमी कपूर वॉज द हीरो।
3: तो दैट इज द रीजन आई डिडंट वर्क, अदरवाइज इट वाज ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, वेरी वेल रिटन, बट दैट इज द ओनली रीजन, देयर वाज नो अदर रीजन।
2: मुझे ये दो पिक्चर के बाद में लोगों को पता चल गया फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि मुमताज और शमी जी, मैं शमी जी तो बेचारे कभी मना नहीं किए, जो क्यों बोलो, मुमताज शमी जी के साथ काम नहीं करती, इसलिए मुझे ऑफर आए ही नहीं।
1: वेल, इन केस यू डोंट नो, तो मुमताज जी और शमी जी 3 साल तक एक रिलेशनशिप में थे। शमी जी ने शादी के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि शादी के बाद वो काम नहीं कर सकती। ये शर्त मुमताज जी को मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने मना कर दिया, और इसीलिए उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा बिटर नोट पे एंड हुआ था। खैर, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: वो ना वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं वो जल ही जाते हैं और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
0: क्या करूं का क्या मतलब है? जलने वाले तो चलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी।

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Chari on your Mirchi.
1: बोल्ड बेबाक बिंदास मुमताज जी, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। मुमताज जी पुराने जमाने की वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस थीं जिन्होंने बिकिनी पहनने की बोल्डनेस दिखाई थी फिरोज खान की फिल्म अपराध में। पर क्या उसके बाद बाकी के और फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स ने उनको ऐसे इंसिस्ट नहीं किया कि उनकी फिल्म में भी वो बिकिनी पहने? सुनिए एक पॉडकास्ट में इसके बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था।
2: मुझे वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि दैट टाइम आई वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्ट्रेस, सो आई कुड अफोर्ड टू से नो, मुझे नहीं पहनना। और मैंने फिरोज को प्रॉमिस भी किया था कि फिरोज मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, उसके बाद मैं कल बिकिनी नहीं पहनूंगी। फिरोज खान वाज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, व्हाट अ लेंस की आईज थी वो इंसान की। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे पेश करूंगा, अगर तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं काट दूंगा। मैंने बोला प्रॉमिस, ही सेड प्रॉमिस। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था अपने फिगर में, बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ हैवी ईरानियन थाइज, सो आई हैड कॉम्प्लेक्स कि मैं मोटी लगूंगी बिकिनी में। तो उन्होंने मुझे रैशेज दिखाया, मैंने बोला नहीं फिरोज, आई एम हैप्पी, यू कैन कीप इट। तो दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट, आई नेवर वोर बिकिनी। आए थे प्रोड्यूसर, आई सेड नो।
1: भाई बिकिनी पहनकर उस टाइम पे मुमताज जी ने शायद एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन सच ये है कि ट्रेडिशनल कपड़ों में, साड़ी में भी वो उतनी हॉट, एक्चुअली उससे ज्यादा हॉट और ब्यूटीफुल लगती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Chaari, only on Mirchi.
1: पुरानी हिंदी फिल्मों में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फैशन स्टेटमेंट कौन सी ड्रेस ने बनाई थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई ऐसे तो देखिए बहुत सारी ड्रेसेस हैं, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट की हम बात करें तो वो है ब्रह्मचारी फिल्म में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे गाने में जो मुमताज जी ने साड़ी पहनी थी ऑरेंज कलर की, और एक्चुअली जिस तरह से पहनी थी उसकी बात ही कुछ और है। वेल कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी भानु अथैया, और एक पॉडकास्ट में सुनिए मुमताज जी ने इसके बारे में क्या कहा था।
2: आई थिंक लियो लोग का शेर जो है उनके ऑरेंज ही होते हैं फेवरेट, तो मेरा भी फेवरेट था, लेकिन भानु अथैया डिड हार्ड वर्क, शी इन्वेंटेड समथिंग वेरी डिफरेंट जो आज भी लोग कोशिश करते हैं कि पहने वैसे, तो सहरा उनको जाता है, मेरा तो सिर्फ कलर था, बट शी वाज द वन हु वर्क्ड हार्ड।
1: अच्छा एक और चीज जिसके लिए मुमताज जी जानी जाती हैं वो उनकी डांसिंग, तो क्या उनको ऐसे लिबर्टी मिलती थी कि वो इम्प्रोवाइज कर सकें, अपने स्टेप्स डाल पाएं?
2: हमारे जमाने में हमको वो सब मिलता भी नहीं था, इधर सीखो इधर करो, सीखो इधर करो, बिकॉज आई वाज सो बिजी। जो भी मास्टर ने सिखाया वो कर लिया हमने, बस जहाँ कैमरा रखते थे डायरेक्टर साहब के कि यहाँ पर वी हैव टू डू दिस, सीख लेते थे और कर देते थे, दैट्स इट। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, वी आर वेरी वेरी ओबीडियंट, करना पड़ता था हर चीज, कोशिश यही रहती थी कि जो भी करो अच्छा करो।
1: अच्छा उसे अच्छा नहीं उसे कमाल कहते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: Mere bete aayenge. Mere Karan Arjun aayenge.
7: अरे करण अर्जुन आमिर शाहरुख ऋतिक अक्षय इमरान सबके गाने आएंगे दीदी
8: आएंगे दीदी।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू और योर मिर्ची।
1: आजकल तो जब फिल्मों की शूटिंग होती है तो स्टार्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके मेकअप मैन, उनके हेयर ड्रेसर, उनके पर्सनल ट्रेनर सब उनके साथ रहता है। वैनिटी वैन में अच्छा खासा घर बसा हुआ होता है। लेकिन एक पॉडकास्ट में सुनिए मुमताज जी ने क्या शेयर किया था कि पहले के टाइम में जब ये फैसिलिटीज नहीं होती थी तब इंडोर और खास करके आउटडोर शूटिंग वगैरह में कैसे सब मैनेज होता था।
2: वैनिटीज नहीं थी लेकिन हमारा मेकअप मेरा परमानेंट था, हेयर ड्रेसर मेरी परमानेंट थी, गाड़ी मेरे पास अल्लाह के फजल से थी। दे यूज्ड टू कम इन द मॉर्निंग, दे मेक मी रेडी इन माय बंगलो एंड आई यूज्ड टू गो फॉर शूटिंग। हाँ, इतनी कंफर्ट नहीं थी। अगर आपको बाथरूम जाना हो जंगल में तो लड़कियों को ले जाना पड़ता है कि पर्दा करो तो मैं जाऊँ। कैसे जाएंगे, जय शिव शंकर का देखिए ना, कहाँ जाऊँ मैं बाथरूम। बट देन आई टोल्ड माय ड्राइवर यू कम एंड देन माय हेयर ड्रेसर केम एंड वन ग्रुप डांसर। साड़ी लेके जाके दूर जाओ जाके फिर एक वो पकड़ रहे वो पकड़ रहे अमंग द गर्ल्स। सो ऑल द थ्री गर्ल्स आई यूज्ड टू डू पीपी देन आई यूज्ड टू से यू वांट टू गो, अरे यस यू वांट टू गो, फिर बाद में कौन उतना चल के आएगा। हमारा हाल था, अभी तो लोग बहुत कंफर्टेबल है। वेरी लकी आई वुड से टू हैव वैनिटी। हमारे यहाँ तो गर्मी में मरो, एयर कंडीशन कहाँ से मिलेगा तुमको आउटडोर में।
1: सही बात है। इसी बात पे जय जय शिव शंकर गाना सुन लेते हैं। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अमित त्रिवेदी, स्टूडियो है, गिटार है, माहौल है, रुके किस लिए हैं आप?

0: Sorry, one more take, please.
1: Take as many takes as you want, Amit Trivedi. हम तो सुनते रहेंगे. मिर्ची, it's hot.
2: Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal. Only on Mirchi, it's hot.
3: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
4: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
5: कैसे रुक सकता है?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
7: मिर्ची स्टोरीज.
8: बस 24 घंटे ही रहेंगी.
9: भाई, एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं, बल्कि कम कर दी.
10: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप. यार, इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है.
6: मिर्ची, इट्स हॉट.
11: 89.6 89.6 It's hot. Purani jeans with Charu, only on

0: Put on your jeans, Mumtaz Special with Charu, on your Mirchi.
1: भाई मुमताज जी ने अपने करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड एक्टर की। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर एज अ टीनेजर भी उन्होंने छोटे मोटे रोल्स किए, फिर एक्स्ट्रा कैरेक्टर रोल, साइड हीरोइंस, इस तरह के रोल भी किए। उसके बाद बहुत सारी एक्शन या स्टंट फिल्में जो बनती थी उनमें काम किया था, जिन्हें तब बी ग्रेड फिल्में कहा जाता था। और इसीलिए ए ग्रेड फिल्मों के बहुत सारे एक्टर्स उनके साथ काम करने से मना कर देते थे। सुनिए इस बारे में एक पॉडकास्ट में उन्होंने क्या शेयर किया था।
2: बिगिनिंग में तो मैं कुछ थी ही नहीं, मुझे सारे हीरोज ने रिफ्यूज किया था कि हम मुमताज के साथ काम नहीं कर सकते, ये फैंटेसी पिक्चर की हीरोइन है, हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे, सिवाय एक दारा सिंह के, सब ने रिफ्यूज किया। उसके बाद में जब राजेश खन्ना ने मेरे साथ काम किया बंधन में, उसके बाद में तो मैं कोई हीरो छोड़ी ही नहीं, सबके साथ काम किया।
1: और इसीलिए जब मुमताज जी की फिल्म में कोई नया एक्टर होता था तो वो कभी मना नहीं करती थी।
2: जब अमित जी इतने बड़े हीरो नहीं थे तो रलन जी ने कहा मुमताज तुम इनके साथ काम करोगी, मैं बोली जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है जब मुझे काम चाहिए था और जब मुझे लोग रिफ्यूज करते थे मुझे कितनी तकलीफ होती थी, तो मैं बोली ऑफ कोर्स ही इज हैंडसम लुकिंग मैन एंड ऑल दैट। तो मैंने अमिताभ सर के साथ बंधे हाथ भी की, मैंने कभी किसी हीरो के साथ काम करने के लिए रिफ्यूज नहीं किया, मैंने कितने नए नयों के साथ भी की हूँ आप देख लीजिए।
1: बहुत ही ऑसम इंस्पायरिंग टाइप की जर्नी रही है इनकी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।